पूरै गुर कृपा धारी तां गत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओत सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया

पूरी नावे अपना नाम आपे दिया प्रभ करन हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधारा एहो पूर्ण बिमल बिचारा कर कृपा अंतर जामी दास नानक सरन स्वामी सोठ महला पंजवा गुरपुरै चरनी लाया हर

पूरी प्रभ रब रहे आपर पूरी हेम कुशल भया इस नाना पार ब्रह्म बितहु कुरबाना गुर के चरण कवल रिद धारी विघ्न न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाउ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन पाशत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस शतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो तेज अकेली नींद नह नैन है फिर परदेस सदायो

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरके पंथ निहारों नैन नीर भर आयो हाँ हाँ पीत भयो है बीचो सुनत दे।

तेरी कुदरत को कुर्बान रहाओ। जैसा बालक पाए सुपाई, लाख अपराध कमावे, कार्य उपदेश छिड़के बहु भांति।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांथे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश कर।

प्रभ स्वामी पात मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांचो संतां तूरी चौठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी किरपा तारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को पयो सहाई सगल

सब कुशल खेम प्रभ धारी, सही सलामत सब थोक उबारी, गुर का शब्द विचारी रहाओ, साध संग मल लाथी, पार ब्रह्म भयो साथी, नानक नाम त्याया, आद पुरख प्रभ पाया, चोठ महला पंजवा, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दइए वसाया, सुख सागर गुर पाया, ता सह

प्रभु की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां आगे।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर

हर हर हर अरादु हर अराद सबु किश पाई कार्य सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी तो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया

पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संतोह सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहे।

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत ताका मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

जो सिवरै तिसकी गत होवै, उधर है सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एहो पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्शे अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाउ। गुरबाणी गावह पाई, ओह सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोठ महला पंजवां।

सुख पाया। संत अस्थान बसे सुख सहजी, सगले दुख मिटाया। रहाउ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी। नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। चौथ महला पंजवां।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संसार।

हरे सगले दास को सुमत दीती रहाओ प्रभ सगले थान वसाए सुख शांत फिर आए नानक प्रभ सरनाए जिन सगले रोग मिटाए सोठ महला पंजवां सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाईए दर्शन भेट होते आनंदा दुख गया हर गाईए हर रस पीवो हो पाई नाम जप हो नामो अराध हो गुरपुरे की सरनाई रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई

तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आ।

याने अपना गुरपूरै बेड़ी काटी मेरे मन गुरु गोविंद सद त्याई है सगल कलेश मिट है इस तन ते मन चिंदिया फल।

कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पनीत काल बयाल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ।

तैं खोजत उदयाना, बहुत जन्म भरमत तैं हारियो, अस फिर मत नहीं पाई, मानस दे पाए पद हर भज, नानक बात बताई। सोरत महला नवा, मन रे प्रभ की शरण बिचारो, जेहे सिमरत गणकासी उदरी, तां को जस उरतारो, रहाओ अतल पयो त्रू जा कै सिमरन, हर निरपै पद पाया, दुख हरता एह बिद को स्वामी, तैं काहे बिसराया, जब ही शरण गही कृपा निधि,

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

सगल जगत अपने सुख लागियो, दुख में संग ना होई रहाव। दारा मीत पूत संबंधी सगरे तन स्यों लागे, जब ही निर्तन देखियो नरको संग शाड सब भागे। कहो कहां या मन बौरे को, इनस्यों ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन। जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो। नाम तहारो लीनो सोठ महला नौ मन रे गहो।

कै झूठह लागियो जन्मे अकारत थोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो पश की न्यायी सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औद सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

आसा मनसा सगल त्यागै जागते रहै निरासा। काम क्रोध जेह परसै नाहन तेह घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जेह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी। नानक लीन

बहुत हित जासियों सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह बिद को व्यवहार बनियो है जासियो नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोठ माला पहला कर पहला अष्टपदिया चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुगदा ना पढ़ो हर बिन होर ना।

बिंद सुख वास्ती नाम वसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी

अजिया जग जोनी सिर सिर लेख सहाम कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ाम मान मुख झूठ लह पैमान।

प्यारी अमृत रसन हरी बूढ़े भारी पै बिना प्यारी तारे नदर करी पी तू है सलाहना प्यारे पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबिया।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगता चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुआउ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेजो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका अलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी।

आपे रंग चढ़ाई, गावो रंग राते हो पाई, हर सेती रंग लाए रहाओ, गुर की कार कमावनी पाई, आप छोड़ चित लाए, सदा सहज फिर दुख ना लगे पाई, हरे आप बसै मन आए, फिर का हुक्म ना जानी पाई, सा को लखनी कुनार, मन हट कार कमावनी पाई, विनना वह कूड़ियार, से गावे जिन मस्तक भाग है पाई, पाए सच्चे बैराग, अन दिन राते गुण रवह पाई, निरपहो गुर लिवलाग, सबना मार जीवाल दा पाई, सो सेव हो दिन रात, सो क्यों मनो वसारी है पाई, जिस दी

जिस प्रतीत न आवे भाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब भाई हौ तिसकै बल जाओ। ओ निर्गुण आरे पालदा भाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास भाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा भेटी है भाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है भाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरै भाई पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया भाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया भाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया भाई भौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया भाई कीतोन अंग अपार। मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति भाई जे किल बिख काटन हार। चोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारी तैं अपना नाम जपाया। बाहर काड बिख पसरिया प्यारी माया मोह वधाया। जिसनों कीतो कर्म आप प्यारी

भुलायन प्यारी उतरै नहीं वजोग जो गुर मेल उदारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी चेतना आवै मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी चेतन होए धूड़ बिललाप करह बहु तेरिया प्यारी उतरै नाही सूल जो गुर मेल सुवारिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत संग ना कीजे प्यारे जे का पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारी सो मोहि काले उठ जाए मन मुख ढोई नह मिले प्यारी।

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटके नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरे एह बिद, जे

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन।

ओरठ सदा सुहावनी, जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन, जीवै सच्चा सोए ससुरै पेयै पैवसी, सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे फिर मिले, खुशी रावै फिर संग सदा शिंगारी नाउ मन कदे।

हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे शिष्ट करता सिर जन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हौ मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफलो सतगुर।

पुरख सुजान कुल उधारे अपना सोजन होवे परवान गुरमुख मोए जीवन दे परवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना।

चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट न आवई हिम्मत कहन न जाय नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी तड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहो बहो विद भांत कर कोई बूझै बूझन हार अंतर विवेक कर सो बूझै इहो विवेक जिस बजाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहानै गुरमुख होए सो भौ करे अपना आप पछाणै गुर प्रसाद।

पावड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित किस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पा।

आई, नानक गुरमुख मिला बड़े आईया, जे आपे मेल मलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा, हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आगै राख कै ऊभी सेव करे, यो गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली, नानक गुरमुख बुझी है जा आपे नदर करी। महला तीजा, जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान। पौड़ी, गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया, जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया, गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया, गुर सतगुर बोल।

पिच्छा सुख नहीं, मर जम्मे वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हो एक वार, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चा दरबार, नानक नाम विहुनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आएंगे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेतेक अरादेया, तिना एक सबेन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरे हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवे सब थाए, पारस परसे पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभ आए, नानक गणत सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवे थाए, महला तीजा, महल कुमहल ना जाननी, मूर्ख अपने सुआई।

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखध खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै

जाहि। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहि। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया। संत जना की धूर मस्तक लाया, नानक पए पुनीत हर तीर्थ नाया। सलोक

ऐ नाम उपजे किसना भुख सब जाय, नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए। महला चौथा, सतगुर पुरख जे मारिया ब्रह्म भ्रमिया कर छोड़ गया, उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै भया। उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ, क्या होए किसे ही दह कीते जा तुर किरत उस दा एहो जेहा पया। जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा, कूड़ बोले किसे ना पावे,

पौड़ी गुर सच्चा बदाते हो रखवाले गुर दित्ते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते गुर कृपाल बेअंत अवगुण सब हते गुरे अपनी कृपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला तां की रजाए लेख्या पाए अब क्या की जय पांडे हुक्म हुआ हासल तदे होए लिबड़िया हंड है जी कमांदे महला दूजा नाक नाथ खसम हाथ किरत तके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गल्लां आप हाट बहालियो न आपे रचन रचाए आपे ही काल्यो न आपे जंत उपाए आप प्रित पाल्यो न दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्यो न नानक भगता सदा आनंद भाओ दूजा जाल्यो सलोक महला तीजा ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वडियाईया दे ना पछोताए हों हर कै सद बलिहार ने जित सेवै सुख पाए नानक गुरमुख मिल रह हम मैं शब्द जलाए महला तीजा आपे सेवा लाए आपे बख्श।

तेन निज कर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई।

परत है या तन की यह बडाई काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रहा ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस।

जाई। हमरा भरम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाउ बाजीगर डंक बजाई, सब

गुरु राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर मई।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिय ज्ञान बिचारा निज निरखत।

गत व्यवहारा रहा कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

ससैल सुख माने कबीरै सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाही

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेत्याउ भा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

मिल पारस कंचन होया मुख मन सारतन परोया निज पाओ पया ब्रह्म पागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संगा सुन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरप दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोय अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रवदास हाथ पै नीरै, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह कास्यो कही है जा कारण हम तुम आरादी सो दुख अजबू सही है दलाभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख ना बिचार्यो राजा राम को रस यह रस अनरस दीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहो जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण वेद विद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोरी।

को नदर करे तुद बाज प्यारे के वरहा सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोई जिस आगे प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी साहिब अपना।

काती कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाने गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल तोवे मुसलमान सोई मालक होवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी ता मीट है नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत।

गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया। तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई, किस सदा आनंद होए दिन राती।

मैं मलत होए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग किस सदा हरख नाही।

बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, अन दिन दाजह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई, भगत करे जन वडियाई पाई, काच रखे सुख सहज समाई।

साचा पावा तनासरी महला तीजा। मन मरे तात मर जाए बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई मन।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काक्या तन संकह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काक्या तन हुनिया वै जाए रहाउ मनमुख भूले सब मरह गवार पवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत साची बाणी

क्या है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाण है कोई, सच साचा सच आप दिरड़ाए, नानक आपे वेख आपे सच लाए। तनासरी महला तीजा, नावे की कीमत मित कही ना जाए, से जन तन जिन एक नाम लिवलाए। गुरमत साची साचा विचार, आपे बख्शे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए। कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ, हम मूरख मूरख मन माहे, हम मैं विच सबकार कमाहे। गुर प्रसादी हम मैं जाए, आपे बख्शे लहे मलाए। विख्या का तन बहुत अभमान, अहंकार डूबे ना पावे मान। आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत सालाही सच सोई। आपे साजे करता सोए, तिस बिन दूजा अवर ना कोए। जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा, कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम भीखक पे खारी तेरे, तू निज पत है दाता। ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हम बलिहार है।

किरपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सत गुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

हर उर तारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हौ मैं मारी, हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सुवारी, तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ भागी, अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी, हर कै नाम रत्ता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर

निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारे गात में तो कह ना सक है प्रभ हम क्यों कर मिल है अपागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब किल विख पाप लह जानी रहाव ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपे हो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लाथी भूख पुखानी जिनके वड्डे भाग वाडी विचे तिन हर जपे हो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महल।

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर हुए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विशुट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपे हो तरह तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरियो चंद चंदा की तुम वड पुरख वाडे अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसा की तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे।

मौज पीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरि सतसंग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाथ कीने जन नानक हर हृदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगाह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

भगत हर दीनी, तब हर स्यों प्रीत बन आई, बहु चिंत वसारी, हर नाम उरतारी, नानक हर पय है सखाई, तनासरी महला चौथा, हर पढ़ हर लिख, हर जप हर गाओ, हर पौ जल पार उतारी, मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट, इव पाण हर नाम मरारी, मन जपिय हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होए दिन राती, हर कीरत कर बनवारी, रहाओ हर हर करी दृष्ट, तब पयो मन उद्यम, हर हर नाम जपियो गत पई हमारी, जन नानक की पात राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है सरन तुम्हारी, तनासरी महला चौथा, चौरासी सिद्ध बुद्ध, तेतीस कोट मुन जन, सब चाहे हर जियो तेरो नाव, गुर प्रसाद को बिरला पावे, जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ, जप मन रामे नाम, हर जस उत्तम काम, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, हम तिनकै सद

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभु चोज बडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तीना सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना।

लकिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सरब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करह सगल जन तेरे तू अबनासी पुरख मरारे ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन द्वारे तनासरी मोहल्ला पंजवां दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

मन गायो, भयो परगास सदा सुख मन मह, सतगुर पूरा पायो रहाओ, गुण निदान रिद भीतर वसिया, ता दुख भरम भउ भागा, भई प्राप्त।

सहज सुख सुभा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूवन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहा।

मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई वर्ण न साको उस्त तता की, कीमत कहन ना जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुर

माया मोह भूलो अवरै हीत। हर चंदौरी बन हर पातरे एह तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होत देखो सुख गर्दभ भस्म संगीत। अमृत

केले वेख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन ने तर दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवां पानी पक्का पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारै

आनंद राज पाई, मुक्ते निमुख बुलाई, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई, नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक त्रिपत अगाई, तनासरी महला पंजवा, जिन कीने वासे अपने त्रै गुण, पवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे, क्या एहो जंत विचारा, प्रभ की ओट गही तो छूटो, साध प्रसाद हर हर हर गाय।

ऐसी ठगौरी पाए पलावे, मन सब कह लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता, उन घर घर मेले ओ दुआ। किस ही वाद घाट किस ही पह, सगले लर लर मुआ। हम बलिहारी सतगुर अपनी, जिन ओह चलत दिखाया। गुजी पाहे जलै संसारा, भगत ना व्यापै माया। संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे। हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर लै आया खाटे। तनासरी महला पंजवा, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारक तुमरे तारे।

भूत सगल समग्री जियो हियो देव अर्पों अपनो चीत रहाओ पार तन पर तन पर की निंदा इन स्यों प्रीत ना लागे संत है संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागे।

टेकै मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछै नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागू राम सिंह हेत सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख का

अवतार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्राट पुरख मेहरवान आठ पहर प्रभु को आरादी नानक सद कुर्बान राग तना श्रीमान।

जी उदारन सब कुल तार हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह अनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

की रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट कलेश मिटह।

अराध हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजै तनासरी महला पंजवां मेरे लाल भलो रे भलो रे भलो हर मंग।

साध जन तन धन आपन थापियो हर जापना निमुख जापियो अर्थ द्रव देख कस संग नाही चलना जा कोरे कर्म भला तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारी रहाओ सास सास निमुख निमुख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी।

दुख सधारे तना श्री महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रख।

निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर मैं बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा, पये कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नवनित रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अंध सगल ही जाई, ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का,

कर आई। संत अनुग्रह भये मन निर्मल, नानक हर गुण गाई। तनासरी महला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस ताके। जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाइए।

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਤਨ ਕਰੈ ਮਨੁੱਖ ਡਹਕਾਵੈ ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ।

मन परमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जा कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावै नाम जपावै ता का युग मह धर्मा।

जिस जन कह पाले सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवा नेत्र पनीत पय दर्श पेखे माता परों रवाल रस रस गुण गा।

मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही, मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा, संत किरपाल दयाल दमोदर। काम क्रोध बिख जारी, राज माल जोबन तन जियरा। इन ऊपर लै बारी, मन तन राम नाम हितकारी। सुख सहज आनंद मंगल सहत, भवनिध पार उतारी रहाओ। तन सो थान, ताने ओए भवना।

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख।

मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिस कै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। सनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाउ। जह जह देखो तह तह स्वामी कोई ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की।

सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजै मिटह कमाणे पाप चिराणे साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह सरन समरथ अकथ अगोचरा पतत उदारन नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्भक पूर्ण ठाकुर मेरा तनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ बड़े भाग पेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना व्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पर धन दुख किश पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवां तृप्त भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना जीवन हर जप साध संग रहाउ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम ते आया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तनासरी महला नौवां, काहे रे बन खोजन जाई, सर्बनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। ओह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनत रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवां, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहो निध पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस, हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे। त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हों मैं मार मिले भगत हारी। अनक जतन कर काल संताई, मरन लखाई मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना तीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संयम हृदय समाए। चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी

दास मह सोई, जह देखा तह अवर ना कोई। गुरमुख भगत सहज घर पाईऐ, बिन गुर भेटे मर आईऐ जाईऐ रहाउ। सो गुर करो जे साच दरड़ावै, कथ कथावै शब्द मलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा। तन में

आवे पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए कोई पाई रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखे जिस भेटी है सफल मूरत करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेखे मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल ज्यो ध्यान लावे माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल भई सफल यात्रा आवण जान रहे मिले सादा रहाउ दूजा तलासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दास पुरब सदा दस

पूरा नामण गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एक वड़े आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजन हारा।

निवारी तनासरी संत महला पहला फिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखियड़ा लेख पुरब कमाया जियो लेख ना मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राते अवगुण बह बह रोसी तन जोबन आक की छाया गिरद भय दिन पुनिया नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुनिया बूढ़ी घर गालियो गुर कै पाए चलो साचा नाम ते आए पावह सुख महलो हर नाम ते आए तां सुख पाए पे अड़े दिन चारे निज कर जाए बह सच पाए अन बिन नाल प्यारे बिन भगती घर वासना होवी सुने हो लोक सबाए नानक सरसी तां फिर पाए राती साचै नाए फिर तन भावे तां फिर भावे नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी नाह प्यारी निव निव भगत करे माया मोह जलाए प्रीतम रस मह रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेते लाल भई मन मारी नानक साच वसी सुहागण।

जो जन भाव भगत कछु जानै तां को अचरज काहू। ज्यों जल जल मह पैस ना निकसै त्यों ढुर मिलियो जलाहू। हर के लोगा मैं तो मत का पूरा ज्यों तन कांसी तजह कबीरा। रमैये कहाने होरा रहाऊ कहत कबीर सुनो रे लोई। परम ना भूलो कोई क्या कांसी क्या ऊखर मगहर। राम हृदय जो होई इंद्र लोक शिव लोक कह जैबू। पूछे तप कर बहुर ऐबू क्या मांगो किस थिर नाही। राम नाम रख मन माही रहा।

कमने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अदकाई रहाउ बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाही तेरु काल अब दे आई अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने तेहु पुत्र पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज ना आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम ले ही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेह तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रेण तार मूंड बलाई हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से पाई बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी खिन मैं पई पराई दुर्बासा से करत ठगौरी।

आए दास बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिट नामो सत्तर दोहे परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाछे बहुर ना आवन पावो अमृत बाणी घटते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोहे है सीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ए संसार ते तब ही छूटो जो माया मह लपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेह तज दर्शन पावो इत कर भगत करह जो जन तिन भव सगल चुकाइए कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो एह संजम हर पाइए मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला।

आऊ ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यो तरनी को कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू दीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरद तेरा धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी चरण सरन नामा बल तिहारी तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजे हो बल बल जाओ रमैया कारने कारण कमने अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधव यह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीमो चिर भयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण वाणी सुजस पूर राखो मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो हरसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटे मैं तो मूल महंगी लई जी सटे रहाओ साध संगत बिना भाव नहीं उपजे भाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर सिंह पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मरारी हर के नाम बिन झूठे सगल

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राये गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठीत सरी अमृत ससी ढेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीत सरी दादी ले लंका गाड़ पपाड़ी ले रावण बाण साल बिसाल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी घर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाऊ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाऊ।

सतगुरु हुए लखावे तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज स्वारता रहाउ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका।

जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाऊ गुर खिन खिन प्रीत लगाव हो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावै मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया भुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिस हर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पत्र पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखिबा रहाऊ धन तन वड भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवह हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेन साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय।

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुरख।

कथा मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मज सूदन मिल

तोल अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख महल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै ताकी निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

उज्जल संग संतन कह पाई है। जैत श्री महला पंजवां कर तीजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहो।

को कहतो सब बाहर बाहर, को कहतो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बजहियो, सर्व निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसहियो, जय श्री महला पंजवां, तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरों पेख प्रभ को नीरो, बेशमार बे अंत बड दाता, मन गिहीरों पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आसा मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख ना कबहू चूरों बुज प्रभ को, जय श्री महला पंजवां, लड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट

कहो नानक अजर जरा जैत श्री महला पंजवा जा कहो भय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद।

है जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधे

हे लाड़दास जन अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जैत श्री महला पंजवां हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो।

जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन को तायो, रतन राम कट ही के पीतर, ताको ज्ञान ना पायो, जन नानक भगवंत भजन।

त्रास भयो उरे अंतर, शरण गही कृपा निध तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन, करत पाप अबहारा

दह दिस को उठताया, घट ही पीतर बसै निरंजन, ताको मर्म ना पाया, नाहिन गुण नाहिन कश जप तप, कौन कर्म अब की जय, नानक हार पर्यो शरनागत, अपै दान प्रभ दीजै, जैत

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल भी ना तरीजै प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रक जिवै तसंतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रिय हबे सखियां मूह कही ना जेहियां यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चितेहियां हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंदा लाल रजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किस निशी छंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हौं किद्दी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता

आई महामंगल रहस थिया फिर दयाल साधना वरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रय अंक अंक मलाई बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जय श्री महा।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन ता कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ, संत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोय, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बे अंत गुणता के क्या गनी, पज सरन स्वामी सुखागामी, तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत नान

जवान बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे। उज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूत है जिथेया, किरत कर्म ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया, उदम करह अनेक हर नाम ना गावही, भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही, पशु पंखी सैल तरवर गणक कशु ना आवे, बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे, रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही, बिनवंत नानक परम है परमाए, खिन एक टिकन ना पावही, जोबन गया बेतीत जर मल बैठिया, कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया, नह नैन दीसै बिन भजन ईसै, छोड़ माया चालिया, कहया ना मन है सिर खाक छन है, जिन संग मन तन जालिया, श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह उठिया, बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया, चरण कमल सरण आए नानक आया, दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया, मिल साध संगे भजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया, हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया, गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया, गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।

मध्य पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामन मन मह दृढ़ी है साच, पूर रहे हो सर्वतर मैं।

आपदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई, सलोक रचंत जी रचना, मात गर्भ अस्थापनं, सास सास सिमरंत नानक, महा अगन ना बनासनं, मुख तले पैरे उपरे, बसंदो को हथड़े थाए, नानक सो तनी क्यों वसारे हो, उदर है जिस दै नाए पौड़ी, रक्त बिंद कर निम्या, अगन उदर मजार, उर्द मुख कुचील बिकल, नरक घोर गुबार, हर सिमरत तू ना जल है, मन तन उरतार, बिकम थानो जिन रखिया, इस तिल ना विसार, प्रभ बिसरत सुख कदे नाही, जासह जन्म हार, सलोक मन इच्छा दान करन, सर्वत्र आसा पूर्ण है, खंडन काल कलिश है, प्रभ सिमर नानक नह दूर नह, हब रंग मान है जिस संग, ऐस्यो लाइय नेहो, सो सहो बिंद ना विसरो, नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करनं माया अनेक उदम है हर भगत भाव।

नात हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरू उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन भिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया।

लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाऊ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

बंदा वै त्यों संत जना हर प्रीत है। देख दर्श अगावे सलोक चितवंत चरण कमलं। सास सास आराधन है नह बिसरंत नाम अच्युत। नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। सीतड़ा मन मजाहि पलक ना थीवै बाहरा। नानक आसड़ी निवाहि सदा पे खंदो सच धनी पौड़ी। आसावंती

एव सदा हजूरीय सलोक रसना उचरंत नाम सर्वण सुनंत शब्द अमृत है नानक तिन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है हब कूड़ा वे कम इकस साई बाहरी नानक से धन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रदान निवाव है प्रभ मथा हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी अदोत करनं हर रमणं संजोग।

परवान। जित मलंबड़ो मापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई। सो मूर्त भला संजोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर त्याई कै मन इच पुजाई। वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है। सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे। छड़े ओ हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप। नानक

0: गोपाल गुर
1: गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समर्थ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है पवजल बिखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगिया पौड़ी तन तन गुर देव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब भई ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचिया

यह तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर मस्त।

आदि संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को।

तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो इन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत ना इहु मन लायो बिगसेओ पेख रंग कसुंभ को परग्रह जोहन जायो चरण कमल सियो पाऊ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यों तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो।

नहीं सतगुर सेवत आयो पांच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वशल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज सिंगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन शर्म कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया कर आभरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया।

प्रभ को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां, कृपा निद बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहाऊ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो

कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कशु मेरा संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विद कौ तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद।

पंजवां सतगुरे आयो सरन तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर

पावह सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहू ते छूटह पवजल जगत तरायण खोजत खोजत

एक कृष्णाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को।

सब किस किस के ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो।

धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाउ प्राण आधार जीवन धन मोरे देखन को दर्शन प्रभ नीत बाट घाट तोसा संग मोरे मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भये मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया।

बिसर नहीं निमकही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ। खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट तारुह प्रभ मान। आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे सम

सदा हजूर जो तुमरा जस गावह करते से जन कभो ना मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के।

हम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख मन उपजेउ कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवां हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पये।

छाया शल तृण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राते जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

कोट फला दर्शन गुर दीथे रहाओ। गुण गावत अचुत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे। अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे। बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे। नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे। टोडी महला पंजवां, साध संग हर हर नाम चितारा। सहज आनंद हुए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ। गुरपुरा भेट्यो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा। कर गह काढ लियो जाने अपना, बिख सागर संसारा। जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ना संकट द्वारा। नानक शरण गही

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम धेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाउ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत बिचारी गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी टूडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देवरा मह जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै। पैसर माते सींग गो देवल मदे लीग आसै। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

स्वामी दुख मैं रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाउ जो किछ

तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर पवजल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नदर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहू सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहू सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाउ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत शगावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा।

हर नाम नित त्याई, जो इच्छे सोई फल पावह, फिर दुख ना लागे आई रहाउ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर स्यो प्रीत लगाई। बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाई। तू बेअंत सर्व कल पूरा, किसकी

पानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ तह दिल हिच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कसनीस दस्तंगीर आखर बेअप्तम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

पाए रहाउ। केसर कुसुम मृग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता जोत अनेही सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होई तेरे नाम निवे रहे लिव लाई नानक तिन दर पीछिया पाई तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद इहु तन माया पाहया प्यारी लीतड़ा लब रंगाई मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों तन सीजै।

दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तौ दर्शन की करो समाए मैं दर मांग भीख्या।

जो किछ करहि सो भला कर मानिए, हिकमत हुकम चुकाइए, जा कै प्रेम पदार्थ पाइए, तौ चरनी चेत लाइए, सहु कह सो कीजे, तन मनो दीजे, ऐसा परमल लाइए, एव कह सुहाग।

कामन नौ निध पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहन सफाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचक्षण।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगह दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी,

रूपा सिमर सिमर सिमर जन सोई नानक कर्म प्राप्त होई जिन जपया तिस कहो बलिहार तिस कै संग तरै संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत

घर तीजा करते कुदरती मुस्ताक दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही ते पाक रहाओ हिन माही थाप उथापदा आचर्य तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मह दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह।

यार बंदे जिस तेरा आधार, गुनाह उसके सगले आपू तेरे जान देख है दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाम, गुर मिल नानक बूझिया।

मन तन बसै सच साहा बंदी मोच रहाऊ। दीदने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौ काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बेहात है फूटे घट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काहे ना गावे मूर्ख अज्ञाना।

संपत रथ धन राज सिउ हत नेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

आई तलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कतेब इफतरा पाई दिल का फिकर ना जाए टुक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाई बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए ए जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी ना ही रहाओ दरोग पड़ पड़ खुशी हुए बेखबर बाद बकाए हक सच खालक खलक मियानी स्याम मूरत नाए असमान मियानी लिहंग दरिया गुसल

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रहै।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जित सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंग है वेहला ना सरवर ना

जोग ना देश दसंतर भवे जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता सहसा टूटै धावत वर्ज रहाई है निचर चरै सहज धुन लागै घर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजे तो निर्भउ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप बुला।

घट ही पीतर सो सहो तोली इन विद चेतर हावां आपे कंडा तोलत राजी आपे टोलन हारा आपे देखै आपे बूझै आपे है वणजारा अंधला नीच जात परदेसी खिन्या।

मैल भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सर नवला आया सब लाथे किल विक पंग हर दीना दीन दयाल प्रभु

हर हर करह नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए।

गुण नाम दृढ़ाई हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ ढूंढाई सत संगत मिल हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा मेले हर पाई सूही महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाए गुरमुख हर हर नाम समाए हर रंग राता मन रंग माणी सदा आनंद रह दिन राती पूरे गुर कै शब्द समाणी रहाओ हर रंग को लोचै सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मनमुख मुग्ध नर कोरा होई जिसो लोचै रंग ना होवै कोई नदर करे ता सतगुर पावै नानक हर रस हर रंग समावै सूही महला चौथा जिहवा हर रस रही अगाई गुरमुख पीवै सहज समाई हर रस जन चाखो हो जे पाई तौ कत अनत साध लुभाई रहाउ गुरमत रस राखो उरतार हर रस राते रंग मरार मनमुख हर रस चाखिया ना जाय हउमै करै बहुती मिलै सजाय नदर करे ता हर रस पावै नानक हर रस

का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही हलत पलत हर तनै की भगतां को मिली वडियाई हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा एहो हर धन अग्नि तस्कर है पानी है जमदूत है किसे का गवाया ना जाई हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी जम जा गाती डंड ना लगाई साखती पाप करके बिखिया धन संचिया तिना एक विख नाल ना जाई हलते विच साकत दहेले पए हथों छुड़क गया अगे पलत साकत हर दरगाह ढोई ना पाई इस हर धन का साहू हर आप है संतो जिसनों दे सो हर धन लद चलाई इस

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

साकार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा बन ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम धर सोई

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती।

मेरा हर हर तिनके सब रूप गवाई ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग भये।

त्रै गुण रूपी विच हों मैं कार कमाई, जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी, हर गुरमुख सूजी पाई। हों मैं रोग सब जगत ब्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख भारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन को हों बलिहारी, जिन शिष्ट साजी।

ज्यो हर पावै त्यो रखिए मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किछ कर हम साक है।

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै। इकना सतगुर मेल तू बुझावै, इक मनमुख करह से रोवै। हर की वडियाई हौ आख ना साका, हौ

मैं मालत हुई, कहो नानक मेरी परम गत हुई। सूही महला पंजवां, कीता लोड़ है सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा नाहीं कोई। जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाउ जल थल महियल रहया भरपूर।

जाइए। जिसनो लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दुए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे तायाण है रास। कर कृपा अपनी भगती लाई, जन नानक प्रभ सदा ते आई। सूही महला पंजवां, तन सुहागन जो प्रभ।

पंजवा ग्रहवास गुर की ना हो घर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाऊ सत शिंगार भउ अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे गुण कामन कर कंतरी जाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते ऊंचा मंदर मेरा सब

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई प्रम प्रम आयो तो नदर ना पाई किन बिद ही अरो तीर निमानो मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता।

निरासी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले झागी, हिन रहन ना पावू बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह फिर है पाई।

सार संभाली मोह निर्गुण के दातारी बै खरीद क्या करे चतुराई एहो जियो पिंड सब थारी लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन कौ हम बारी रहाओ प्रभ दाता मोहे दीन पेखारी तुम

दृष्ट नाही रे पेखते अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंधे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय, कर कृपा मुहे साध संग दीजै। तो किस पाइय जो होइय रे ना, जिसै

एत व्यवस्था मह लपटा न रहाउ महा मोहे मोहो गावारा पेखत पेखत ऊठ सधारा ऊचते ऊच ताका दरबारा कई जंत बनाहे उपारा।

पंजवां जीवत मरे बुझे प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिया मिल साधु हर नाम उच्चरिया रहाओ एक बिना दूजा नहीं जाने काट काट अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किस करे सोई पाल माने आद अंत की कीमत जाने कहो नानक तिस जन बलिहारी जा कै हिरदय वसह मरारी सूही महला पंजवां गुर परमेश्वर करने हार सगल सिष्ट को दे आधार गुर के चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तन ते जाए रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढ़े जन्म जन्म का टूटा गांडे गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवे शांत सतगुर की रेण वड भागी पावे नानक गुर को सद बल जावे सूही महला पंजवां गुरे अपने ऊपर बल जाइए आठ पैर हर हर जस गाइए सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सगल कथा का अंतर जामी रहाऊ।

किल बिख जाही। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला। सुई महला पंजवां दर्शन।

अपनी शरण राख प्रभ दाती, गुर प्रसाद किन विरले जाती। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल बस।

साजन सुत बंधप भाई जत कत पेखो हर संग सहाई जत मेरी पत मेरी धन हर नाम सुख सहज आनंद विश्राम रहाउ पार ब्रह्म जप पहर सलाह कोट आवद तिस बेदत नाही हर चरण सरन गढ़ कोट हमारे काल कंटक जम तिस ना बदारे नानक दास सदा बलिहारी सेवक संत राजा राम मरारी सूही महला पंजवा गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा आनंद बनोद मंगल।

जन तूर बछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करहु उत्साहा नानक दास हर सरन समाहा सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभ चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाए लियो जन अपना उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो।

आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रैनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत भरन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पापत जायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता

त्यो मूड़ा जित तू लाव है तित तित लगना जा तू देहे तेरा नाव जपना रहाउ हर के दास हर सेती राते राम रसायण अन दिन माते बाहा पकर प्रभ आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवा संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की फासी।

रहाउ निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहो विद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहोर ना फिरिया सूही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहो विद रूप रंग अपारा पेख खुशी भोग नहीं हारा।

सरनी आया, पुरुष आया, कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरह पठाया रहाऊ महा दुत्तर माया, जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया। करो धर्म राया गृह अंध कुपाया, पावक सगराया गही ओट सधाया। नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया, राग सूही महला पंजवा घर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेना।

पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई

जित तुद त्याई निर्मल हुआ देहा मेरे राम हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ वेद पढ़े पर ब्रह्मे हारी एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे हुए वर्ते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

करते का निमक सिमरत जित शूट है संतो हो सागर पार उतरी है जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिय रहा कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल प्रिय साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना हुई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खतरी ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा गुरमुख

जल थल मही अल सोई रहाव। कोट अपराधी संत संग उदर है, जमता कै नेड़ ना आवे। जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर स्यों आन मिलावे। माया मोह परम पहु काटे, संत सरण जो आवे। जेहा मनोरथ कर आराधी, सो संतन ते पावे। जन की महिमा केतक बरनऊ,

एक परवासा तुम्हारा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाउ। अंधकूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता टेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कसना सी।

बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याई तेरी गत मित तू है जान है कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी

आऊ, चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कौ बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाव सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंतै पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई।

भाव निद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गया ले हो प्रीतम प्रबराया, भणत नानक सहो है पी होसी, जय पावे प्यारा तैर वेसी, सूही महला पहला कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कच्चा रंग कसुंभ का थोड़ड़िया दिन चार जी हो, विण नावै भ्रम भुलिया

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अनको की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया

मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना, जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है, मरसी होए वडाणा मन तन भंग है, गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया, गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया, एक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी, सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है, त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है, बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ, तू गुरमुख रखण हार हर नाम त्याई है, मेलह तुझह रजाए शब्द कमाई है,

साचा साचा शब्द सुनाई, गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाई, मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए, सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नातै मल जाए, सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुर ते पाए, तन मन सब किश हर तिस केरा, दुरमत

चाखी तृष्णा अग्न बुझाए, गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रहे आसमाय। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै

कोई अमृत भरे भरपूर है, ओना तिल ना तमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेसेन, सेवड भागी जे ओना मिल रहे, अन बिन नाम लेन, देसी रिजक संवाहे, जिन उपाई मेदनी, एको है दातार सच्चा आप तनी, सो सच तेरे नाल है, गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेल लए, सो प्रभ सदा संभाल, मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे, हम मैं शब्द जलाए, सो

साच रखा उर तार मिलिया हुए ना विछड़ गुर कै हेत प्यार फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया सोभावंती नार मनमुख मन न भिजई हत मैले चित कठोर सप्पै दुध पी आई है अंदर विस निकोर आप करे किसे आखिया आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरै ता सच बनया शिंगार सच्चा साहु सच्चे बन जारी उतै कूड़े ना टिकन उन्ना सच ना पावे दुख ही माही पचन हम मैला जग फिरै।

मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन नानक खुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग में विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हों तिन कै बलिहार मन हर गुण सदा रवन रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होऐ लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया रब आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोई गुर प्रसादी।

तुझे अराधी दुख पी तुझे त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सूख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी धोवा।

सुतिया गुर सलाहिय उठदिया पी गुर अलाव कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ ता के धुआ पाव कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन

आचाउ हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाउ ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कितै उपाय त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाय मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुर तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिवलाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस परापत सोल है, गुर चरणी लागे आए। अका

सतगुर मीत मलाया, मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओह अविनाशी पुरख है, सब मैं रहया समाए। राम नाम धन संचया, साबत पूंजी रास, नानक दरगाह मन्या, गुरपुरे साबास। राग सूही अष्टपदियां महला पंजवां कर पहला, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। उर्ज रहयो बिख्या कै संगा, मन है व्यापत अनक तरंगा, मेरे मान अगम अगोचर, कत पाई पूर्ण परमेश्वर रहाउ। मोह मगन में रहया व्यापे, अत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे।

तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा अष्टपदियां कर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन जिथिया मन रहसी है क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से लाइन प्रभ स्यों रंग।

यह ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जम्मै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा, जिन मन विठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार, तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्व मैं, तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सूई महला पंजवां, अष्टपदियां घर दसवां काफी।

मोहे बाद अहंकार सर पर रुन्निया, सुख न पायन मूल नाम विशुन्निया, मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया, सोदत सोदत सोद तत बीचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया, आवह जाहि अनेक मर मर जन्मते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरमते, जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया, खोज है कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे, विसरनाही दातार अपना नाम देह, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह, राग सूही महला पहला कुचजी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन कुचजी अम्मावन डोसड़े, हों क्यों सहो रावण जाऊं जियो, एक दू एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाऊं जियो, जिन्नी सखी सहो रावया,

पाए जियो। सोई दस उपदेसड़ा मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। एहो मन तै कू देवसा मैं मार्ग देहो बताए।

चित मै मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

आदि हम कर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

ता गुण रवै मन भावै सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवै साच पावै साच की मत क्यों टलै इशनान दान सुग्यान मज्जन आप अशल्यो क्यों छलै परपंच मोह बिकार थाके कूड़ कपट ना दोई मेरा मन राता गुण रवै मन भावै सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया मथ अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचे लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले हुए पराया साहिब सो सलाही है जिन जगत पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यों मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा पिर भावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म स कर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूझे गुर शब्दी सच जानिया साजन होने अपने क्यों पर घर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेखै तिसे पाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाण क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूझे अंध बूढ़ो धंधली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दसे मन परदेसी जे थी है सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला तां सुहेला पाजंत अनहद बीना गुर महली घर अपने सो भर पुरलीना कीता क्या सालाही है।

आप भुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुल, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोह लड़ा हर त्यावहु, गुरमुख हर फल पावहु, गुरमुख फल पावहु हर नाम त्यावहु, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विटोह, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जापहु, सुख फल हर जन पावहु, नानक कह सुनो जन भाई, सुख सोह लड़ा हर त्यावहु, सुन हर गुण पीने सहज सुपाय, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पौ भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तिने अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाय, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुरते उपजै शब्द विचारा, गुर शब्द विचारा, राम नाम प्यारा, जिस कृपा करे सो पाए,

त्रिपट अगाही हर गुण गाए सदा त्रिपतासी फिर भूख न लागे आए दह दिस पूज हो हर जन की जो हर हर नाम त्याई।

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंते रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे कोई। हम मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे। शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना, रव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए,

सच समाए सच वरत है सब थाई सच्चा शिंगार करे दिन राती कामन सच समाई हर सुख दाता।

गुरमति घट चानन होआ। प्रभ रब रहिया सब थाई राम, प्रभ रब रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल होमै मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करतै नाम नवै निध पाई।

शब्द रवहु, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावह नारी, अनदिन भगत करह गुर आगे, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर किरपा घर आए, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर

जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्दे मेल मलाई नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाई संत संगत स्यों मेल भया हर हर नाम समाई राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भई

हम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाई नानक तिन घर सद ही सोहला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जां प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा, विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा, हर हर आनंद भया दिन राती।

परम गत पाई, पंच मिले सुहाया गया क्रोध ममता तन नाथी, पाखंड भरम गवाया हौ मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत भये शरीरा गुर प्रसादी।

वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरु पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

और पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिला हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बडभागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बल नाम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया फल

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा कर दूजा, गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए। हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सहज सुपाए। अन दिन भोग भोगे सुख सोवै, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुर पूरा पाईऐ, अन दिन नाम त्याए। सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए। निर्मल जल नाए मैल गवाए, पए पवित्र शरीरा। दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा। हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी। हर नाम प्यारे शब्द निसतारी, अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कह सोई पर की जय, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहण आया। व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

प्रभु संत जन हो, गुण गाव है गोविंद के रे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे, तू करता सब थाई एनस जपी सदा सालाही। साच शब्द लिवलाई अन दिन सहज रह रंग राता। राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण, अवर ना जाने दूजा। सब मह राव रहया

अहंता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई काय ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चूटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई

राम सतगुर पाए चलो जीवत्या इव मरिया राम जीवत्या मरिया पौ जल तरिया गुरमुख नाम समावै पूरा पुरख पाया वड भागी सच नाम लिव लावै मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मलाया ज्योति ज्योत मिलाई सूही महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे हो मन तन देवा सतगुर है मैं मेले प्रभ गुण तासे तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबासे वड भागी हर पाया जन नानक नाम बगासे गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवहो चिरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हाँ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यों जल बिन मीन मराहा वड भागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा मन दह दिस चल चल भरमिया मन मुख परम भुलाया नित आसा मन चितवै मन तृष्णा भूख लगाया अनता धन धर दबिया फिर बिख भालन गया जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावै पच पच मोया गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया मेरा हिरदय सुध बुद्ध विसर गई मन आसा चिंत वसारिया मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया वड भागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारिया सूही संत महला चौथा मारे हिस्वे जन हों मैं बिखिया जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया दे कंचन वे वन्निया इन हों मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब कालखा इन मनमुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे गुर शब्दी हों मैं छुटिया वास्याने हो वे जन इस मन को मन वासे ज्यों नित पौंदिया दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौधिया जन नानक प्रभ देहो मती छड आसा नित सुख सौंदिया सा तन आसा चित करे राम राजिया हर प्रभ सेजड़ी है आई मेरा ठाकुर अगम दयाल है।

प्रवत्याया जिन प्रवत्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सब कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा।

निर्जनहारा जिसते खाली कोई नाही, ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी। सफल दर्स भेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी। संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो। सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो। गुण गोविंद गाओ नित नित, प्राण प्रीतम स्वामिया। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जामिया। सत संतोख वजह वाजे, अनहदा चुनकारी। सुन भै बनासी।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठा

वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना। प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला। कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा। तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे। अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे। ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण। सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना। ऐसा गुर वड भागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम। जन्म जन्म के किल विख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाई प्रभु ते आई है बहुड़ जोन ना आई है। गुर चरनी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए।

आया हर पूरन कृपा धारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो।

तेरे प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थल मही अलपूर।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटिए काल की फासी राम कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अवनासी क्रोध

सगली तप्त बनासी राम, दुख पाप का डेरा ढाठा, कारज आया रासी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया, साच धर्म पुन फलिया, सो प्रभ अपना सदा त्याई, सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल महियल सो।

प्रभु परसे हर राया राम, मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम, गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाइया गुर चरण लागे सदा जागे।

जिन तारिया सूही महला पंजवां तै सागरू भै सागर तरिया हर हर नाम त्याय राम बोह थड़ा हर चरण अरादी मिल सतगुर पार लंघाए राम गुर शब्दी तरिय बहुड़ ना मरिय चूकै आवन जाना जो किश करह सोई भल मानो ता मन सहज समाना दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै सुख सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आपनड़ा मन आगे धरिया सर्बस ठाकुर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदर थित पाई अणद बनोद सिमरहु प्रभ साचा विछड़ कबहू ना जाई सावड़ भागन सदा सुहागन राम नाम गुण चीने कहो नानक रवह रंग राते प्रेम महारस पीने अनद बनोद भये नित सखिए मंगल सदा हमारे राम आपनड़ प्रभ आप शिंगारी शोभावंती नारे राम सहज सुभाए भये कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उर धारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारी कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारी गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार त्याए राम जप एक प्रभु अनेक रविया सर्व मंडल छाया ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल थल महियल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए पेख दर्शन नानक बिगसे आप लय मलाए सूही महला पंजवां अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप वसाया राम करते आप वसाया सर्व सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे गुण गावे हैं पूर्ण परमे

ज्ञान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ

प्राण आधार गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख ना।

राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जी हो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हों तिसकी दासी मरे न आवे जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा सूह वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए फिर छोड़िया घर अपने मोही दूजे पाए मिठा करके खाया बहु साधु वध्या रूग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख हुए सो पलटिया हर राती साज शिंगार सहज सच पिर रावया हर नामा उर धार आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मेली करतार नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सूहविये निमाणिये सो सहो सदा समाल नानक जन्म सवार है अपना कुल पी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचायन आकाश पताला हुक्मे धरती साजियन सच्ची धर्मशाला आप

खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित

लाल हुआ रसना रती गुण सार सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार नानक करमी महल पाया।

मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मनमुख मुग्ध रत्ता हउ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां एह ना आखियन जो मढ़िया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन।

0: नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी।
0: हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिन किए तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्चिया
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन पिर मन मानिया तो बनिया शिंगार किया तो प्रवान है जा सहो धरे प्यार पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार। महला तीजा तन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग स्यों हो मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर।

पुरख सजान गुर प्रसादी सेवी सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

निशान नानक नाम लाहा परवान घर आए बजी वधाई सच नाम की मिली वडियाई महला पहला राती होवन कालिया सोपेदा सेवन देहु बग्गा तपै घना कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे

कुवार कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा, काग उडावत कुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी, सूही कबीर जियो अमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया, रहाओ करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती, किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया, कहो कबीर तेई नर भूले।

हो जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाउ ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारह ताल जो जानह पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदा।

पटवारी ऊपर पुजा कर मैं गुर पह पुकारिया इन्हो लिया उभारी रहाओ नौ डांडी दस मुनसफ धाव है रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मापह नाही बहु बिस्टाला लेही बहत्तर घर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई।

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रविदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जानहु त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावै। सब घट भीतर हाक चलावै।

ललत बेड़ा बंध ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाऊ, जो किश हुआ सब किश तुझते, तेरी सब असनाई। तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई। जो तुद पावे सोई आखा, दिल तेरी बड़े आई।

अलख अपेओ रहाओ, माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुए, एक एक नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचै तारिया, अवर न सूजै गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज ध्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बौरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै, छिन सत गुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरे हो मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेट चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सियों, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, पहला जन्म गवाया, दूजा भाऊ ना देई लिव लागण, जिन हर के चरण वसारी,

जंत विचारी मुक्त बंद सब तुझते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐसो मुक्त कही है मन मुख बंद विचारी सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा हुए ता सोजी पाए तिस ते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वस्से मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव धात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब में है एक समाना सतगुर परचै हर नाम समाना जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाई अन दिन लागे सहज त्या ना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना जब अपनी जोत खिंच

लाए चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पावे है मानत पाहे निदाना बलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावह आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हौ तिन बलिहार जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाइए हर गुण गावे सहज सुपाई रहाउ सदा रंग राते तेरे चाय हर जीव आप वसे मन आए आपे सोभा सद ही पाई गुरमुख मेले मेल मलाय गुरमुख राते शब्द रंगाय निज कर वासा हर गुण गाय रंग चलूले हर रस पाई एहो रंग कदे न उतरे साच समाय अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुर मेरा बलावल महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई हम मैं माया शब्द जलाई डर साचै गुर ते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा अन दिन आनंद हुए मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाउ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरन को समसर वेखै बहुड़ ना मरे ना जम पेखै घर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया।

अभमान सद ही लागा सहज ध्यान अन दिन गावे एको नाम इस जुग में बड़े आई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखा तह रहया समाई।

लाया, नानक त्रिशन बुझी मन तन सुख पाया, राग बलावल महला चौथा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उद्म मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यों नटुआ तंत बजाए तंती, ज्यों वाजह जंत जना, जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय हर बसना रहाउ, माया ग्रस्त भ्रमत है प्राणी, रख ले वह जन अपना, ज्यों प्रहलाद हर नाकस ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना, कवन कवन की गत मित कही है, हर की ये पतत पवन्ना, ओह ढोऐ ढोर हाथ चम चमरे, हर उदरियो परियो सरना, रव दीन दयाल भगत भव तारन, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दसन्ना, बलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मति, शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर, हम पात्र हीन अकर्मा, मेरे मन भज राम नामे रामा, गुरमत हर रस पाईऐ, होर त्यागो निफल कामा रहाउ, हर जन सेवक से हर तारी, हम निर्गुण राख उपमा, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर, हर जपिया वड्डे कर्मा, नाम हीन त्रिग जीवते, तिन वड दुख सहम्मा, ओए फिर जोन पवाई है, मंद भागी मूड अकर्मा, हर जन नाम आधार है, तुर पूर्व लिखे वड कर्मा, गुर सत गुर नाम दरड़ाया, जन नानक सफल जनम्मा, बलावल महला चौथा, हमरा चित लुभत मोहे बिखिया, बहु दुर्मत मैल परा, तुमरी सेवा करना सकह प्रभ हम, क्यों कर मुग्ध तरा, मेरे मन जप नर हर नाम नर हरा, जन ऊपर कृपा प्रवतारी, मिल सत गुर पार परा रहाउ, हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी, हर देहो मत्ती जस करा, तुमरे संग लगे से उदरे, ज्यों संग काष्ट लोहो तरा, साकत नर होछी मत मद्दम, जिन हर हर सेव ना करा, ते नर भागहीन दोहचारी, होए जन्म मोए फिर मरा, जिनको तुम हर मेलो स्वामी, ते नाए संतोख गुर सरा, दुर्मत मैल गई हर भजिया, जन नानक पार परा, बलावल महला चौथा, आवहु संत मिलहु मेरे भाई, मिल हर हर कथा करहु, हर हर नाम बोहित है कल युग, खेवट गुर शब्द तरहु, मेरे मन हर गुण हर उच्चर हो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परहु रहाउ, काया नगर मह राम रासी उत्तम, क्यों पाईऐ उपदेश जन करहु, सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पीयो, हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संत हो चाख दिखो, गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिख रस हो, राम नाम रस राम रसायन, हर सेव हो संत जन हो, चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजो हो। बलावल महला चौथा, खत्री ब्राह्मण सूद वैस, को जापै हर मंत्र जपैनी, गुर सत गुर पार ब्रह्म कर पूजो हो, नित सेव हो दिन सब रैनी, हर जन देखो सत गुर नैनी, जो इच्छो हो सोई।

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरिय बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन चलारी माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हमे पचे दीपक देख पतंगा। सगल श्रृंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पर्दा देख भई निहाल।

पंजवां सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव, तरत पनीत भई गुण गाय, दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव, सबनी थाई रवे आप, आद जगाद जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे, पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली, जित्तै कित्तै दिसह नाली, नानक दास खसम प्रतपाली, बिलावल महला पंजवां, सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणित गुण

प्यारी जिसनो होए दयाला सफल मूर्त गुरुदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म।

मांगै पूरै कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड भागी से कांडिय है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधी है निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटी है प्यारी चूकै जम की काणी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणी। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है बिनस है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। बलावल महला पंजवा बिखै बन फीका त्यागरी सखिए। नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ गई सगली। सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकती ही काई। साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगन अत रूप रस माते इन संग सूख ना पाया। धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड भागनी सखिए संतां संग समाइए। तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै चरण कमल लिव लाइए। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइए। प्रेम बिछोहो ना मोह ब्यापै नानक हर एक त्याईए। दृष्ट धार मन बेदिया प्यारे रतड़े सहज सुपाए। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छ पजाए। नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया

आदि एक रूप सगलोपासारा आपे बंज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाई जत जत जाइए।

आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी। रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पों सब अपना, कमल सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोबा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों, साध संग इस मन है उदारो, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लई मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रभ सब मह आपी, हर जप रसना दुख ना व्यापी। रहाउ तिखा भूख बहु तपत व्यापिया, शीतल भये हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मन त्रिपताना

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाउ। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंधप भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई।

ना गणी रहाव सगल सरंजाम करी प्रभ आपी भय मनोरथ सो प्रभ जापी अर्थ धर्म काम मोख का दाता पूरी पई सिमर सिमर बेधाता साध संग नानक रंग माणिया कर आया पूरे गुरे आणिया बलावल महला पंजवा सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव हर हर नाम जपत नर जीवे मर खवार साख नर थीवे राम नाम होआ रखवारा चख मारो साकत बेचारा निंदा कर कर पचह कनेरे मृतक फास गले सिर पैरी कहो नानक जपह जन नाम ताके निकट न आवे जाम राग बलावल महला पंजवा कर चौथा दुपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन संयोग मिलो प्रभ अपने पल पल निमक सदा हर जपने चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो कमल सो मत जित प्रीतम पाम।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी, रहाओ हम अवगन करह असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारे, तुम देव हो सब किश दया तार, हम अकिर्त कनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे, तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारी। बुलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याईए, जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा, रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा अवर नहीं चारा। ने धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा, जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बुझे, बाद साध अहंकार मह मरना नहीं सूझे। सतगुर से वो अपना काहे फिर हो अभागे, देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे कीता। रहा ऐसी भगत गोविंद की पीत हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

अवसर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदारन साध प्रभ तिन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभु संतन पागराल। उकत सियान कछ नहीं नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते काट हो जमजाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। लावल

जमदूत छड जाए तुमरी कृपा ते छूटी है बिनसै अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाऊ खोजत खोजत खोजिया नामै बिनकूर जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर जित जित लाभ हो तित तित लग है स्यानप सब जाली जात कात तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए बलावन महला पंजवा साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोबिंद का सूची भई रसना मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहा हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट भई उल्ट कमल बिगसना शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राखिया भई भ्रम पसना नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल राज मिलक सिकदारिया अग्नि मह जाल संत जना का शोहरा इस चरणी लाग माया तारी शत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाऊ संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखु समान भगत जना का लूघरा ओड नग्न ना होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई साकत स्यों मुख जोरे है अद विचो टूटे हर जन की सेवा जो करे इत उत छूटे सब किश तुम ही ते होवा आप बनत बनाई दर्शन भेट तसाद का नानक गुण गाई बलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर सीस तार हर नाम त्यावो कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो संत जना की रेणुका लै माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो पाव मनोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास नह विसरै अनकत है ना तावो सफल दर्शन गुर पेटी है मान मोह मटावो सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया जिस जन होवा साध संग तिस भेटै हर राया एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाऊ सरन परे की राखता नाही सहसाया कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया मत भूलो मनुख जन माया परमाया नानक तिस पत राखसी जो प्रभ पहराया बलावल महला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक शिदर मन मैं ढके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरै प्रभ मने ते जिसके गुण ए प्रभ ताज रचे जे आन स्यो सोरलिये खे रहाऊ सिमरहो सिमरहो सास सास मत बिलम करे छोड़ पर पंच प्रभ स्यो रचो ताज कूड़े ने जिन अनक एक बहुरंग किए है होसीये कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने
दास दास को दासरा नानक कर ले। बलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अन्यास, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे,

सास सास सुमारे करनहार जो कर रहया साई वडे आई गुरपूरे अपदेसिया सुख खसमर जाई चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता बिलावल महला पंजवा महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी अंडकूप मैं गलत थे काढ़े दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्व ला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साधक पूर्ण असाए भय बिन से त्यों लोक के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार।

साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै हर हर हर हर जापियै अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपूरा जिस पेटिया ताकै सुख प्रवेश मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिय सो पुरख दातार मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लावो सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबहु ना विसरै प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा तृष्ण बुझी ममता गई नाठे भय भरमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत तृपता सिया ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बलावल महला पंजवा हर भगतां का आसरा अन नाही ठाऊं तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊं कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए

नानक करिया साध संग हर हर गुण गाव। बलावल महला पंजवां। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तौ छुट्टै जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड। सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाय महामीत तिस स्यों तेरा भेद। बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना। तन तन सरबसे अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवां। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार। जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच। पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिए नाम। कथा कीर्तन हर अत घना।

पंजवां खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर कर कृपा जा कहो मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवां जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हर आप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट पूर्ण पई समग्री कबहू नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत आराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवां सिमर सिमर पूरन प्रभु कार्य पहेरा।

आए भगतन की रास तोट ना आवै कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार बस्त कमावत सब सुखी किसी ऊन न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करहै सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बलावल महला पंजवा हर हर हर आराधिय होइय आरोग राम चंद की लष्कर का

जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग राग बलावल महला पंजवां दुपदे घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया।

प्रभ राखता भगतन की यान। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनार बिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप। राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित

पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याध मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखियन

आप रोग मटाए जिवालियन जा कावड प्रताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां।

जाती, मिल संगत हर गुण गाय, रसना अगह अगह गुण राती, नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख भंजन।

दंड होत बंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा।

करहु सोई पल हमरे पेख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मनह बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत

पूर रही दिन सर रात रहाउ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जन आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाव गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाती,

पर अपारा एक बस तीरन एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो।

इस सिद्ध मुन इंदिरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रहे आसमाई रहाओ। जह महापयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेटले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ। जो मनुख मनुख की सेवा, ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, धंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, पेखियो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहियो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौं क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आगे क्या कहता रहाओ। अनबोले को तुही पछान है, जो जीन मह होता। रे मन काए कहां लो डह कह, जो पेखत ही संग सुनता। ऐसो जान भये मन आनंद, आन ना बियो करता। कहो नानक गुर भये।

सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी है रहाओ, जो देखै शिदर तो निंदक उमा है, भलो देख दुख भरी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचै, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पलाया काल नेरह आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानक का राखा।

करह करावह मुकर पावह पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ काच बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे।

द्वार मोह बंद परे कहो नानक प्रभु होत दयारा गुर भेटै काढ़े बाहां परे बलावल महला पंजवा मन तन रसना हर चीना पए आनंदा मिटे अंदेसे सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ ज्ञान पते सब पई स्या।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन सीना बलावल महला पंजवा गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही

नाम जरा मरा कछु दुख न व्यापै आज्ञा दरगाह पूर्ण काम रहाउ आप त्याग परियै नित सरनी गुर ते पाईऐ एहो निदान जन्म मरण की कटियै फासी साची दर

भास्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तितह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाओ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन स गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अरा

विश्वंबर पूर्ण सुखदाता सगल समगरी पोखण परन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं दरन राग बलावल महला पंजवा दुपदी घर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा ईक है निर्गुण ऊग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर खुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा का कौ दराओ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साध मूत गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बलावल महला पंजवा तुम समरथा कारण करन ताकन तात गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाओ जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो ठौर नाही कस ढीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं कृपाल कृपा निद जीवन पद नानक हर दर्शन बलावल महला पंजवा ऐसी कृपा मोहे करो संतह चरण हमारो माथा नैन दर्स तन तूर पर हो रहाओ गुर को शब्द मिरही अरे बासे हर नामा मन संग धरो तस्कर पंच नवार हो ठाकुर सगलो परमा होम जरो जो तुम करो सोई भल मान है पावन दुबदा दूर टरहो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संगले मोहे उदरहो बलावल महला पंजवा ऐसी दीख्या जन स्यों मंगा तुमरो

पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवा ज्यों भावै त्यों मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच ना साको तुमरी काल तुमरी गात मित तुम ही जानो जियो पिंड सब तुमरो माल अंतर जामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होए हमारू नानक प्रभ जियो नजर निहाल बिलावल महला पंजवा राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलत अग्न मह जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लात निद निधान नानक हर सेवा अवर से

0: प्रभ मेरे।
1: पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा,
0: पतत पावन प्रभ दीर्घ तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारू, जन नानक प्यास

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अभिमान अर चिंत बरानी साध है शरण पाए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए। महामुग्ध अजान अज्ञानी राखे तार दए। कहो नानक गुर पूरा पीट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवां जीवो नाम सुनी। जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब

भाव है हार कजर वस्त्र आभरण कीने उडीनी उडीनी उडीनी कब करया वैरी रहाव सरन सुहागन चरण सीस धर लालन मोहे मलावहु कब करया वैरी सुनो सहेरी मिलन बात कहूं सगरो अंग मटावहु तव कर ही लालन पावहु कब रस मंगल गुण गावहु आनंद रूप त्यावहु नानक द्वारे आयो तव मैं लालन पायो री मोहन रूप दिखावे अब मोहे नींद सुहावे सब मेरी तिखा बुझानी।

द्रौपदी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गनका जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हू मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रु बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करै व्रत फुन राखै, नह मनुआ बस जाको। निःफल धर्म ताहे तुम मानु, साच कहत मैं जाको।

को दूजा देख कहों पावे मन सोए नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला मन का कहया मनसा करे इहो मन पुन पाप उच्चरे माया मद माते त्रिपत ना आवे त्रिपत मुकत मन साचा पावे।

आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेविय अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत।

चूकै अब मान गुरमुख नाम सदा सदा बखान सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई औगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सतगुर मिलिया वड्डी वड्याई।

तार गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपे आप खाए हों मेटे, आन दिन हर रस गीत गवैया। गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, हिन पल रह ना सको बिन नावै। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाउ, एक गिरहो दस द्वार है जाकी। अहनस तस्कर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जाव है। मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहु मानक भरिया। जागे ज्ञान तत लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने। गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोहिता। खेवट शब्द गुर पार लंघैया, जम जगाती नेड़ ना आवे। ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती। मैं हर जस कहते अंत ना लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवे। मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मन तृप्तै। श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म

भगत पाए हर नाम समैया, बलाव महला चौथा। हर हर नाम शीतल जल त्यावो, हर चंदन वास सुगंध गंधैया। मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संग हर बुहिया। जप जगन्नाथ जगदीश गसैया, सरल परे से ही जन उबरे। ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहाओ, पार अठारह मह चंदन उत्तम। चंदन निकट सब चंदन हुईया, साकत कूड़े ऊब सुख हुए। मन अभमान विछड़ दूर गईया, हर गत मित करता आपे जाने। सब बिद हर हर आप बनैया, जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे। जो तुर लिखिया सो मिटै ना मटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे। सागर भगत पंडार खलैया, गुर चरणी एक शरदा उपजी। मैं हर गुण कहते तृप्त न पहिया, परम बैराग नित नित हर त्याय। मैं हर गुण कहते भावनी कहिया, बार बार खिन खिन पल कहिए। हर पार न पावे परे परैया, शास्त्र वेद पुराण पकार है। धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया, मनमुख पाखंड परम विगूते। लोभ लहर नाव भार बढ़ैया, नाम जपहो नामे गत पावहो। सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया, हउमै जाए ता निर्मल होवै। गुरमुख परचै परम पद पैया, एहो जग वर्ण रूप सब तेरा। जित लावह से कर्म कमैया, नानक जंत बजाए वाजह। जित पावै तित राहि चलैया, बलावल महला चौथा। गुरमुख अगम अगोचर त्याया, हों बल बल सतगुर सत पुरखैया। राम नाम मेरे प्राण वसाई, सतगुर परस हर नाम समैया। जान की टेक हर नाम टिकई।

सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाओ। हम निरखत फिरऊं सब देश दसंतर, मैं प्रव देखन को बहुत मन चैया। मन तन काट देऊं गुर आगै, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देऊं चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध हैं, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया। थिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ ना सकै बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन।

नानक हर गुर सरण समैया। बलावल महला चौथा। मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया। गुर देखे शरदा मन पूरी, ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया। मिल मिन सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया, रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया, वैदिक नाटक देख पुलानी। मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया, हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम। ज्यो बिन अमलै अमली मर गैया, जिनको प्यास हुए प्रभ केरी। तिन अवर ना पावे बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मलावे। हौ तिस विटहो बल बल घुम गैया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले। जहां सत सत सत गुर सरन पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकुर। महल ना पावे मन मुख परमैया, गुर गुर करत सरन जे आवे। प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया, कर कर किरिया चार वधाए। मन पाखंड कर्म कपट लो भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मया। पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जहां हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिनको ठाकुर कृपा तारी। बाहा पकर नानक कड लैया, राग बलावल महला पंजवा। अष्टपदी घर बारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही। ताजे आन सरण गही रहाओ, प्रभ चरण कमल आपार। हौ जाऊ सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे। ताजे आन कतह ना जाहे, हर नाम रसना कहन। मल पाप कल मल दहन।

बिस्माद चख अनद पूर्ण साध नह डोली है इत ऊत प्रभ बसे हर हर चीत तिन नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जम ना पेख नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लह ना पेव नित करह मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जा की महा बिखड़ी कार ता की मित न जान कोए जल थल महियल सोए कर बंदना लख बार थक परियो प्रभ दरबार प्रभ करहो साधु तूर नानक मन सापूर बलाव महला पंजवा प्रभ जन्म मरण निवार हार परियो द्वार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग।

तार विखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पुजा प्रभ जी ले हो हर नाम अपना दे हो प्रभ तुझ बिना नहीं थाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोहे बांदी दे बिन भजन होवत खे जमदूत महाभयान चित गुप्त कर मह जान दिन रैन साख सुनाए नानका हर सरनाई पै पंजना मरार कर दया पतत उदार मेरे दुख गने ना जाहे हर बिना कतह समाए गह ओट चित वी नाथ नानका दे रख हाथ हर गुण दे गोपाल सर्व घट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस एक निमक रहन ना जाए वडभाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यो मीन जल स्यो हेत अल कमल भिन्न ना भेत ज्यो चकवी सूरज आस नानक।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो बात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखरी।

गोविंद भजन रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखे।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ। दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने। क्या लै आवहै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटां खाहे। बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़। तरत अकास किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़े किस आखां दूर चौथ अपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा।

बिन सबनासा फूटे खपर दुबदा मनसा ममता जालते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बलावल महला तीजा वार सत कर दसवां।

समाई, आप अपाए सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

0: व्यवहार वार
1: दिन सन हैणते में संसार आवा गौण किया करतार निश्चल साच रहया काल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आदि पुरखे आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटिए सो जी पाए परपंच चूकै सच समाए जाकै।

रह मुग्ध गुवार। नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए, इकत नाम सदा रह आसमाय। बलावल महला पहला, शंत दखनी

धरी हर लिवलाई राम लिवलाई हर सिंह रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक।

राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ की नाराम बलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै बड़ भाग गुरपूरै वेखा लिया नानक हर लिव लाग संत मेरा हर प्रभ रावण आईया हों मैं बिख झागे राम गुरमत आप मटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम गुरपूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिव लाई राम हम मूर्ख मुग्द मलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु साबास है जिन हों मैं मारी राम जिन वड भागियां वड भाग है हर हर उर तारी राम जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइए गोविंद पाइए देहो सखिए मोहे मते दिन रहन ठाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

मिल संते आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योती पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करन कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखे सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागीय गह कंठ लाइय नह लज्जाइय चरण राज मन पागीय भगत ठगौरी पाए मोह अनत कतहु ना तावह बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावह बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मरण मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक।

वास आओ सखी असी तिरका मंगल गाव है तज मान सखी माते अपने प्रीतम भाव है तज मान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावा।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भना मेरी सेज सोही देख मोहे सगल सहसा दुख हरा नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा।

पियो सुख सागर प्रभ भेटे है। नानक सुखी होत एहो जीओ संत सुख सागर प्रभ पाई है। जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है। हर चरनी लागो राम छोड़ सियान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम। नानक पवो सरनाई राम राय थिर हुए सुहागो राम। सो प्रभ ताज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम। लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम। पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम। नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उच्चरह बल गईये दोहचार नरसना राम। प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रसना राम। प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम। नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम। लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम। चंदन चीर सुगंध रसा हौ मैं बिख त्यागण राम। ईत ऊत नह डोलिय हर सेवा जागण राम। नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम। बलावल महला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम। गुण गोविंद।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रसक न्याड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ पेखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जलह।

था हरि उत्तम हर प्रभ गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाई मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप

हर त्यावुहु भगतोहु दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मनमुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावनी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है विचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति जोत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिया सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

नानक जिने अंदर सच है से जन छपहना किसे देश पाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाईए जां कहो नजर करे मानस ते देवते भए सच्ची भगत जिस दे हौ मैं मार मलायन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उना अंदर हिरदै पाई निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन उना पराया भला ना सुखाई। क्या हुआ किसे ही की चख मारी जां सच्चे स्यों बन आई जे गल करते पावे सा नित नित चढ़े सवाई सब चख चख।

चित लाई, हर सुख पल्लर त्यागिया, नाम विसार दुख पाई, मनमुख ज्ञानी अंधले, जन्म मर

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान ना लागे, दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगे, करमी सतगुर भेटिए ता सच नाम लिव लागे, नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागे। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाउ मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार, भनत नानक सुनो जन पाई, सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार, दूजे पाए सूते कबहु ना जागह, माया मोह प्यार। नाम ना चेत है शब्द ना विचार है, इहो मनमुख का विचार, हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सच बख्शियन, सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा, होर तहट ना वथ ना विसाहु। भगत जना को सन्मुख होवै, सो हर रास लए वे मुख पास पाह, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है, जम जगाती तिन्ना नेड़ ना जाह। जन नानक हर नाम धन लद्या, सदा वे परवाह। श्लोक महला तीजा। इस जुग मैं भगती हर धन खटिया, होर सब जगत परम भलाया,

आप तरिया कुल उदरे धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मुनि।

सबना का अभिमान जिथे को वेख तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे वेमुख होवै सो फिरे प्रिष्ट थान जन नानक कै बल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए पै।

का अन्न, पांच चोर तिना कर मोहन, हम मैं अंदर सन, साकत मुठे दुरमती हर रस ना जान, जिन्नी अमृत भरम लुटाया देख स्यो रचह रचन, दुष्टा से ती पिरहड़ी जान स्यो वाद करन, नानक साकत नरक मह जम बदे दुख सहन, पै किरत कमाम दे जिव राख है तिवै रहन, महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया तानन ताने तिस, सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस, हिरदय हर हर नाम रस कबला सेवक तिस, हर दासां का दास हुए परम पदार्थ तिस, नानक मन तन जिस प्रभ वसै हम सद कुर्बान है तिस, जिनको पूर्व लिखिया रास संत जना स्यो तिस, पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया, सोई वर्तिया जगत मह कट कट मुख भणिया, बहुत वड्याईया साहिब है नह जाही गणिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया, नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यों बनिया।

आनंद वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुर बख्श लए।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नाख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो।

भेख तारी, आसन पवन दूर कर बबरे, छोड़ कपट नित हर भज बबरे रहाओ। जेहे तू जाच है सोते पवन भोगी,

वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानी है जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

की कार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाउ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

केश किसी कै हाथ नाही मेरे स्वामी, ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा। जे हर त्याग अवर की आस कीजै, तां हर निफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरे अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, तां आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा। जो संसार के कटम मित्र भाई दी सह मन मेरे, ते सब अपने स्वाई मलासा। जित दिन उनका सुआओ होए ना आवै, तित दिन नेड़े को ना टुकासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरै दुख सखासा। इसका प्रवासा क्यों कीजै मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मंत गुर उपदेश लै जप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का साचा परवासा। गोंड महला चौथा। हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल मन अपना। जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मह सब निदान। सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रतना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना। शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओहो उत्तम संत भयो बड़ बड़ना। किस जन की वड़ियाई हर आप बधाई, ओहो कटे ना किसे की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक कहो हर दान एक दीजै, नित बस हृदय हरी मोहे चरना। गोंड महला चौथा। जितने शाह पातशाह अमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

नाम हरि भज सदा दीवान। जो हर महल पावै गुरबचनी, किस जेवड़ अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तलवंत कुलवंत मिलखवंत, दीसह मन मेरे सब बिन सजाहे, ज्यो रंग कसुंभ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगाह पावै तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस, चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावै सो प्रधान। ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा, त्यों सत संगत मिल पतत परवान।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तै वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करइए, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लइए, मेरे मन हर जप हर नित पड़इए, हर बिन को मार जवाल ना साकै, तां मेरे मन कायत कड़इए, रहाउ हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरइए, हर एको बोलै हर एक बुलावै, गुर पूरै हर एक दिखइए, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरइए, निह कपट सेवा कीजै हर केरी, तां मेरे मन सर्ब सुख पइए, जिस दै वस सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा तिहइए, जन नानक सो हर नाल है तेरै, हर सदा तिहाए तू तुद ले छड़इए, गोंड महला चौथा।

राग गोंड महला पंजवा चौपदे हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कह परे पंडार सगल कटां देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

भविति आय काटे अवकट जात कतह सहाय रहाउ रंक राहु जाक एक समान कीत हस्त सगल पुराण बियो पूछना मसलत तरे जो किस करे सो आपे करे जा का अंत न जान सकोए आपे आप निरंजन सोई आप अकार आप निरंकार काट काट काट सब काट आधार नाम रंग भगत भय लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अगाए नानक तिन जन लागै पाए गोंड महला पंजवा जा कै संग इहो मन निर्मल जा कै संग हर हर सिमरन जा कै संग किल बिख होहे नास जा कै संग हृदय परगास से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम गाइए जा कै नीत रहाउ जा कै मंत्र हर हर मन वसै जा कै उपदेश परम पौ नसै जा कै कीर्त निर्मल सार जा की रेन बांछै संसार कोट पतत जा कै संग उधार एक निरंकार जा कै नाम आधार सर्ब जिया का जानै पेओ कृपा निदान निरंजन देव पार ब्रह्म जब पये कृपाल तब पेटे गुर साध दयाल दिन रैन नानक नाम त्याय सुख सहज आनंद हर नाय गोंड महला पंजवा गुर की मूरत मन मह ध्यान गुर कै शब्द मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय लै धारो गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार मत को परम भुलै संसार गुर बिन कोई ना उतरस पार रहाउ भूले को गुर मार्ग पाया अवर त्याग हर भगति लाया जन्म मरण की त्रास मिटाई गुर पूरे की बेअंत वडाई गुर प्रसाद ऊर्द कमल बिगास अंधकार मह भया प्रगास जिनकी आसो गुर ते जानिया गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया।

सेवक की पूरन काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे। गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग। गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद। गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव। गुर बिन अवर नाही मैं थाऊं, अन बिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान। गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार। अंधकार मह गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा। गुर पूरा पाई है वड भागी,

सब ते निर्मल पूर्ण काम रहाउ। राम राम धन संच भंडार, राम राम राम कर आहार, राम राम विसर नहीं।

जप नानक दास गोंड महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को कर है सलाम लूट ले साकत पत खो है सात जना पग मल मल धो है पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याई तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेतन रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख कीनो ठाऊ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उड़तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी कर के

भगत पाए हर कीर्तन करिए, जप पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गोंड महला पंजवा, गुर के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इस तन ते मार, होए रही है सगल कीरीना। घट घट रमैया सब महचीना, इन बिद रमहु गोपाल गोविंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। आठ पहर हर के गुण गाओ, जी प्राण को एह सुवाओ। ताज अभमान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर स्यो मन रंग। जिन तू किया तिस को जान, आगे दरगाह पावे मान। मन तन निर्मल होए निहाल, रसना नाम जपत गोपाल। कर कृपा मेरे दीन दयाला, साधु की मन मंगेर वाला। हो दयाल देहो प्रभ दान, नानक जप जीवै प्रभ नाम। गोंड महला पंजवा, धूप दीप सेवा गोपाल। अनक बार बंदन करतार, प्रभ की शरण गही सब त्याग। गुरसो प्रसन्न भये वड भाग, आठ पहर गाइए गोविंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। हर गुण रमत भये आनंद, पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद। कर कृपा जन सेवा लाए, जन्म मरण दुख मेट मलाए। कर्म धर्म एह तत् ज्ञान, साध संग जपिए।

कृपा तार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अनद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी सरन प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए करन कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिय संसार वड भागी पाइये पुरख अपार रहाव जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटह उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

साधु संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जाको राख रखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जप

जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाई, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कुनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवा।

लागै, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां महा।

मराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाही, सगल पै मिटे जाकी सरन, निंदक मार पाए सब धरन।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरिया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा कहो कबीर शूशा घट बोले। भरिया हुए सो कबहू ना डोले गोंड। नरु मरे नर काम न आवे पशु मरे दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह

साधना कीतै, तन मन रमत रह मह कीतै रहाउ। जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइयै, सूत बिना कैसे मणि परोइयै, कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाइयै, साधु बिन तैसे अवगत जाइयै। जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपरे धोई, घोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन तज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना। गोंड कूटन सोए जो मन को कूटै, मन कूटै तो जमते छूटै, कुट कुट मन कसवट्टी लावै, सो कूटन मुक्त बहु पावै। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार रहाउ। नाचन सोए जो मन स्यो नाचै, झूठ ना पतिए परचै साचै, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारह सोदै, पांच पलीतह कौ प्रबोधै, नौ नायक की भगत पछानै, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करै, इंद्री कै जतन नाम उच्चरै, कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरदेव अत रूप विचखन। गोंड धन गोपाल धन गुरदेव, धन अनाद भूखे कवल टहकेव, धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम।

जो नर होवे है तीन भवन में अपनी खोवे है छोड़ है अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में बक्ते दूधा तारी गुप्ती खाव है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुज है हर कीर्त नामा अपने राम है भाजरे मन आलसिया रहाउ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस पाव सिंदं गोंड नाद भ्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत ना फेरो रहाओ ज्यों मीना हिरे पशुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखी हिरे परनारी कौडा डारते हिरे जुआरी।

बीतल देखिया मूर्ख को समझाऊं रे रहाओ पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़या आवत देखिया था मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखिया था रावण सेती सरबर होई घर की जोए गवाई थी।

नामे सोई सेविया जह देहुरा नाम सीत। राग गुण बाणी रविदास जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राण जप मुकंद मस्तक निशान। सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल धन लादी। एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार। मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जोग तार। उपजियो ज्ञान हुआ परगास कर कृपा लीने कीट दास। कहो रविदास अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवा ताहू की। गोंड जे हो अठ सठ तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै। जे हो कूप तटा देवावै करे निंद सब बिरथा जावे। साधका निंदक कैसे तरे सर पर जान हो नरक ही परे। रहाओ जे हो ग्रहण करे कुल खेत अर्पे नार शिंगार समेत। सगले सिमरत सर्वनी सुने करे निंद कवने नहीं गुने। जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना सौंडे करे निंद बहुजोनी हांडे। निंदा कहां करो संसारा निंदक का प्रगट पाहारा। निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सधारिया। जोड़ राम कली महला पहला कर पहला चौपदे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराना। कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे त्याना। अब ही कब ही किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गति हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी। कर कृपा राखो मेरी लाज पते। रहाओ कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए पयाले। लोभी जियड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले। मरन लखाए मंडल मह आए जीवन साजह माई। एक चले हम देख है स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का पाई ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देव है अंते होए सखाई। राम कली महला पहला सर्ब ज्योत तेरी पसर रही। जह जह देखा तह नरहरी जीवन तलब नवार स्वामी। अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरों पार स्वामी। रहाओ जह पीतर घट पीतर बसिया बाहर काहे नाही। तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर आपे सर्ब रहया भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तह रहया समाए। अंतर सहसा बाहर माया नैनी लागस बाणी। प्रणवत नानक दासन दासा परता पेहगा प्राणी। राम कली महला पहला जित दर वस है कवन दर कही है। दरा पीतर दर कवन लह जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह किन बिद सागर तरिये जीवत्या नह मरिये। रहाओ दुख दरवाजा रोह रखवाला आस अंदेसा दोए पट जड़ी। माया जल खाई पानी घर बांधिया सत कै आसन पुरख रह किंते नामा अंत ना जानिया। तुम सर नाही अवर हरे ऊंचा नहीं कहना मन मह रहना।
आपे जाने आप करी, जब आसा अंदेसा तब ही, क्यों कर एक कह, आसा भीतर रह निरासा, तो नानक एक मिले, इन बिद सागर तरी है, जीवत्यां इयों मरिय रहाओ दूजा, राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी, बाजै लोक सुने, पत झोड़ी मंगन कै ताई, भीख्या नाम पड़े, बाबा गोरख जागे, गोरख सो जिन गोए उठाली, करते बार ना लागे रहाओ, पानी प्राण पवन बंद राखी, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साधक अर जोगी जंगम, पीर पुरुष बहु तेरे, जे तिन मिला ता कीरत आखा, ता मन सेव करे, कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह, ऐसे भगत मिल है जन नानक, तिन जम क्या करे, राम कली महला पहला, सुनमा शिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नह डोले, ऐसी जुगत जोग कौ पाले, आप तरह सगले कुल तारे, सो अवतूत ऐसी मत पावे, अहंस सुन समाध समावे, रहाऊ भिख्या पाए भगत पै चले, हुए सो तृप्त संतोख अमुले, ध्यान रूप हुए आसन पावे।

कात बाद सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदियां ढिल ना लाईए हर जन अमृत कुंट सरनी के वड पागी तित नवाईए राम मुँह को हर जन कारे लाईए हौ पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाईए रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मलाई है सतगुर जेवड अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख त्याई है सतगुर सरन परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई है एक अपने सवाई आए बह गुर आगे जो बगल समाद लगाई है बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाई है नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराई है राम कली महला चौथा सतगुर दया करहो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लग है गुर चरनी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर ना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक थिन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरह मेरी माया तन तन वड भाग गुर सरणी आई हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर ना कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जो पाया नाम हीन फिर है से न कटे तिन कस कस नक वढाया मोह को जग जीवन जवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम त्याया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम सुमारी राम गुर हर हर नाम कंठ तारी गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारी रहाओ कोट कोट ते तीस त्यावह ताका अंत ना पावह पारी हृदय काम कामनी मांगह हृद मांगह हाथ पसारी हर जासु जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारी जे वड भाग होवे ता जपिए हर पहो जल पार उतारी हर जन निकट निकट हर जन है हर राखे कंठ जन तारी नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारक हर प्रित पारी राग राम कली महला पंजवां घर पहला

सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित ना आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा।

तल ऊपर आवहु ऐसी सेव कमावहु आपस ते ऊपर सब जानहु तौ दरगाह सुख पावहु संत हो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलहो गुरमुख बाणी रहाव परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई सतगुर मिलहो नवे निध पावहो इन बिद तत बिलोई परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो आत्म चीनो पाई निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर।

पूर पंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इह जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत न आवस दूजी बाता सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहू जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाही।

वा तुने अगाजा निर्त करे कर मनुआ नाचे आनी घुंगर साजा राम को नृत्यकारी पेखै पेखनहार दयाला जेता साज सिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पांच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहो कुंट पीतर राखे दस पातो पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सब हो नरारी पाखे कर कर नित हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक लचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंध पाल नार दी नर हर जान हदूरे हूंगर खड़क त्याग वसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत।

कोई बाछ पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोव नहारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बीचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई। रोव नहार पे उठ सधाई, परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया कर।

रहाउ रथ में वसया सत का खेड़ा तृतीय मह किस भया दुतेड़ा द्वितीया अर्दो अर्ध समाया एक रहे आता एक दिखाया एक सूत परोए मणिये गांठी भिन भिन भिन भिन तनिये फिरती माला बहो विद पाए खिंचया सूत ता आई थाए चहो मह एक मत है किया तह बिखड़े थान अनक खिड़कियां खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया इउं किंकुरी अनूप वाजै सुन जोगी कै मन मीठी लागै रहाउ दूजा राम कली।

ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किनै विरले दीठा रहाउ निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर भय निह काम तन मन शीतल अग्न निवारी अनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर किरपा ते नीच निवाजिया।

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हों सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महमा जा की गहर गंभीर

अनक पाप ता के पानी हार जा को मया पई करतार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ करता राखै कीता कौन कीरी जीतो सगला भवन बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण बल बल जाइए ता के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान

सतूठा घट घट रमैया तिनही दीठा राम कलि महला पंजवां पंच शब्द तह पूरन नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद केल करह संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग

ला पंजवा जो किछ करे सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना डोलन ते चूका ठहराया सत माए ले सत समाया।

सुख घर में आया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निदान संतोख।

जस हृदय वसाई नानक ते जन उत्तम पाई राम कली महला पंजवा गौ कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओह चरणी आए पई सुन संतो हो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उधार रहाउ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओह सेवक सेवा करे।

सो भूखा रह, इस संग राचे सो कशु न लह। इस त्याग सतसंगत करै, वड भागी नानक ओ तरै। राम कली महला पंजवां, आत्म राम सर्ब मह पेख। पूर्ण पूर रहया प्रभ।

ना किस सेवा ना किस काल, कर कृपा प्रभ कीनी दया, बूढ़त दुख मह काढ़ लया, सुन सुन उपजियो मन मह चाऊ।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यों प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपटयो भ्रम ग्रह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवा रैन दिनस जपो हर नाम आगे दरगाह पावो थाऊ सदा आनंद न होवी सोग कबहू न व्यापै हो मैं रोग खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा परम गत पावह हर सिमर प्राणी रहाऊ गण में देखो सगल बीचार नाम बिना को सके ना तार सगल अपाव ना चालह संग भवजल तरिया प्रभ कै रंग देही धोए न उतरे मैल हम मैं व्यापै दुबदा फैल हर हर औखद।

नानक की प्रभ शरदा पूर राम कली मोहल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा

दुख अंधेरा मनते जाए, दुर्मत बिन सह राचे हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुर पूरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसे, अमृत नाम रसना नित जपे, कोट जन्म के काटे पाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे, टूट ना आवे अखुट भंडार, नानक भगत सो है।

का पूता हर भगता हवालै होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ तोट ना आवे अंत नहीं हर पारा वार रहाउ कीर्तन निर्मोल गहीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संत।

दोष्ट करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिसे आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास राम कली महला पंजवां मेहमाना जानह बेद ब्रह्मे नहीं जानह भेद अवतार ना

जाऊं। संकरा नहीं जान पेव खोज तहारे देव, देवियां नहीं जान मरम सब ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपने रंग करता केल आप बिछोड़ आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

राम कली महला पंजवा राखन हार दयाल कोट भव खंडे निमुख ख्याल सगल अराध जंत मिलिय प्रभ गुर मिल मंत जीयन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाउ ताकी गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद।

मत सार जित हर सिमरीजै कर कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाओ नानक जपिया गुरु।

निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवां दलाब दे सवार जाहि ना दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लए छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोहे सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरै पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनी जय।

किसका सब कोए, किसह अराध सदा सुख होए, काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे, मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाउ, जो जो करे सोई मान ले हो, बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाणा।

सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै। नानक जापी जप जाप, सबते ऊच जाका प्रताप। राम कले महला पंजवां, बिरथा परवासा लोक। ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस। अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास। एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवै पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे, रहाओ तुम ही कारण करन। चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया। आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव। जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान। राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै। आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम। सफल नाम।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल कब रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जगजीवन माधो पौ पंजन रिद माहे अराध।

होए प्रभ दयाल, गुर का दर्शन देख निहाल, परा पूर्वला कर्म बन आया, हर के गुण नित रसना गाया, हर के संत सदा परवान, संत जना मस्तक निशान, दास की ऋण पाए जे कोए, नानक तिस की परम गत होए, राम कले महला पंजवां, दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय धर ध्यान, तूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस भेट मिटे अभमान, पार ब्रह्म सब नदरी आवे, कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ, गुर की कीर्त जपिए हर नाओ, गुर की भगत सदा गुण गाओ, गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान, गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे न व्यापै तृष्णा भूख, मन संतोख शब्द गुर राजे, जप गोविंद पढ़दे सब काजे, गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुरदाता दयाल बख्शिंद, गुर चरणी जा का मन लागा, नानक दास तिस पूर्ण भागा, राम कले महला पंजवां, इस परवासै बिच रह भवन, मूड़ मुगद तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नहीं जानै, पंच बटवारे से मीत कर मानै, सो कर सेव जित उदरह मीत, गुण गोविंद रवियह दिन राती, साध संग कर मन की प्रीत रहाओ, जन्म बिहानो अहंकार अरवाद, तृप्त न आवे बिखिया साध, परमत परमत महा दुख पाया, तरी न जाई दुत्तर माया, काम न आवे सो कार कमावे, आप बीज आपे ही खावे, राखण को दूसर नहीं कोए, तो निस तरह जो कृपा हुई।

राम कली महला पंजवा एह लोके सुख पाया नहीं भेटत धर्म राया हर दरगाह सो बावंत हुन गर्भ नाही बसंत जानी संत की मित्राई कर कृपा दीनो हर नामा पूरब संजोग मलाई रहाओ गुर कै चरण चित लागा तन तन संजोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डीठा।

अब सुरी सत पाई करनहार प्रवेहर देव उठा हाथी मछली का जाला टूटा सूके काष्ट हरे चलूल ऊंचे थल फूले कमल अनूप अग्न नवारी सत गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव किरत घणा का करे उदार।

जिस कृपा करे साध संग सो पव जल तरे अमृत पीवो हो साध प्यारे मुख उजल साचै दरबारे आनंद करहो तज सगल बिकार नानक हर जप उतरोह पार राम कली महला पंजवा ईंदन ते बैसंतर भागे माटी को जल दह दिस त्यागे ऊपर चरण तले आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समर्थ हर जीव आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

बिखैठ गौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया, निंदा कर कर बहुत विभूता, गर्भ जोन में किरत पया, पूर्व कमाणी छोड़ नाही, जमदूत ग्रास्यो महा भया, बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिष्ण न बूझे बहुत हया, असाध रोग उपजया संत दुखन, देह बनासी महा खया, जिन्ह नवाजे तिन्ही साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्म मया, राम कली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा न जाई रहाओ, दर्शन पेखत हुए निहाल, जाकी तू

बिन से अभमान, एक त्याई है साध कै संग, पाप बनासे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास, काट काट रव रहया गुणतास, दर्श दे तारू प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास, राग राम कली महला पंजवां, कर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गावु राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाई, आवागौन मिटै मेरे मीत, रहाओ गुण गावत होवत परगास, चरण कमल मह होए निवास, संत संगत मह होए उदार, नानक भवजल उतरस पार, राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जप सदा सुहेले, सगल मनासे रोग कूरा रहाओ, एक अरादो साचा सोए, जा की सरन सदा सुख होए।

बिरख श्यामनी चरण कमल सरन नानक सुख संत पावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओट ले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्वाणा रहाउ बड भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सदावै अजामल कौ अंत काल में नारायण सुध आई जा गत को जोगी सरपाशत सो गत छिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कश विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद।

अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ। मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह कछ ज्ञाना कौन नाम जग जा कह सिमरै पावै पद निर्वाना भई दयाल कृपाल संत जन।

निस्बा सुर मह निमख एक उर तार है जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवार है राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले छिन छिन औध घटे निस्बासुर बिरथा जात है दे रहाओ तरनापो बिखिन स्यों खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन, हुए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपत रह सा धरती सो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार, हुए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाउ, कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ पास ना बैठा, दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा, जे

लखन एई जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना आख गुणा कल आई है।

वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बकरान पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाव भया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावह आसन त्याग काहे सच पावह ममता मोह कामन हितकारी ना अवतूती ना संसारी जोगी बैस रहो दुबदा दुख भागे घर घर मांगत लाज ना लागे रहाओ गावह गीत ना चीनह आप ज्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जमडंड फूटै खापर भीख न पाई बंधन बांधिया आवै जाए बिंद न रख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े

कैसे उतर सपारी, मुंदरा पटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारी सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ, माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए, नाम रतन निर्मूलक हीरा, तितराता मेरा मन पीरा, हऊ मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का पौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए ना मन डुलाए, सहज निरंतर रहो समाय, गुरमुख जाग रहे अवतूता, सद बैरागी तत् परूता, जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए, अनहद शब्द बजै दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्वाणी, सुन समाद सहज मन राता।

आवे राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

जाए, चार सपवन संघासन पी जाए, न्योली कर्म खट कर्म करी जाए, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर महल तीर्थ परमीजै, मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै, किरत पया दोष का कौ दीजै, अन ना खाहे देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं चीजै, मनमुख जन्म जन्म मरीजै, सतगुर पूछ संगत जन कीजै, मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै, राम नाम बिन क्या कर्म कीजै, ऊंदर दूंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रुवीजै, नानक नाम मिलै कृपा प्रभु कीजै, राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रभ ते होई, जुगा जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाउ, नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादुर लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई,

मन तन निर्मल अभिमान अभेवा कर्म मिले पावे सच नाम तुम शरण लागत रहो स्वभाव तुम ते उपजो भगति पाओ जप जप गुरमुख हर नाम हो मैं गर्भ जाए मन पीने झूठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत बीचार राम कली महला पहला ज्यों आया त्यों जावह बौरे ज्यों जन्मे त्यों मरन भया ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यों हेत वधाई है की नाम विसार है परम गया रहाउ जत सत संयम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट पया पुन दान इशनान ना संयम साध संगत बिन बात जया लालच लागे नाम बसारे ओ आवत जावत जन्म गया जा जम धाए केस गह मारे सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेस करह नटुआ ज्यो मोह पाप मह गलत गया हित उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार वथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हम मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देखै साकत मन अभमान पया जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै अंतर सहसा दुख पया अंत काल किस साथ ना चालै जो दिसै सब तिसह मया आदि पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसे सुनावह पै सागर असराल पया देख कटंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सात बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन जोत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरपव ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है तेरे पवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख है सतगुर शब्द विचारी सिंही सुरत अनाह दवाजै कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपरी

योग जुगत एव पाए नदरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजै नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी एता अदिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हौ गुर सलाही सदा अपना

भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरतारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हौ गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे भंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है।

तिस का आखन बिखम बीचारी शब्द लगे से जन निस्तरे पव जल पारी उतारी बिन हर साचे को पार न पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी बादी बिन सह सेवक सेव है गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान विचारी हम मैं तृष्णा मारी।

अहंकारी जिचरयंतर सास तिचर सेवा कीच जाए मिलिय राम रारी आन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटो बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

किस करना सो कर रहया अवर ना करना जाय। आपे साजे सिरट अपाए सिर सिर तंदै लाई। तिसह सरेवो ता सुख पावो सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाय लख न लखना जाई। आपे मारज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई। सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई। आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता नगुरी अंध फिरै लोकाई। जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया सतगुर बूझ बुझाई। इकना नाम हो आप पलाई इकना गुरमुख दे बुझाई। सदा सदा सलाह हो संतो तिस दी वड्डी वड्याई। तिस बिन अवरना कोई राजा करत पावस बणत

बणत बनाई सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हृदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहया विस्माद मेरा प्रभ रविया सर्व थाई राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावे बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मनह सुखाने।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

ज्ञान अंधेर वंजाई, करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई, बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई, एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो,

संभव काल अंधकार दीपाई। अंतर्यामी जीयन का दाता देखत तृप्त अघाई। एकंकार निरंजन निरपौ सब जल थल रहे आसमाई।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कह

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहे आ सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुसटारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

संतोह शब्द तरहु प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया।

विचारिया। एक भरम पूले फिर दह दिस, एक नाम लाग सुआरिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावे। कह नानक जिस देह प्यारे, सोई जन पावे। आवहु संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। करह कहानी कथ केरी, कित द्वारे पाई है।

कथयो हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत परम पलाया।

सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया,

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया।

कित संयम धोता जाय, मन तो वो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाय। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजे एहो सहसा इव जाय। जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले। तिन्नी जन्म जू ए हारिया ए तिशना वड्डा रोग लगा, मरन मनो वे सारिया।

जन्म जूए हारिया जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सच समाणी जन्म रतन।

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई। जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याई। अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परनै। गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै, बिन सत

रसना कहया कछु ना जानी चित जिनका हिर लया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाऊ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाई कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ सेव सकते आपे उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख किसह बुझाई तोड़े बंधन होए मुक्त शब्द मन वसाई गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एकस स्यों लिवलाई कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाई सिमरत शास्त्र पुन पाप बीचार दे तत्तै सार ना जानी तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो तत्तै सार ना जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुतिया रैन विहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागे।

केवड़ दाता, जे अग्न मह आहार पहुंचावी, उसनो केहो पोहे ना सकी, जिसनो अपनी लिव लावी, अपनी लिव आपे लाई, गुरमुख सदा सुमहली है, कह नान केवड़ दाता, सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अग्न उधर मह तैसी बाहर माया, माया अग्न सब इको जेही, करतै खेल रचाया, जां तिस भाणा तां जम्मिया, परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाउ दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी, तिनी विचे माया पाया, हर आप अमुल कहै, मुल ना पाया जाई, मुल ना पाया जाई, किसे बिटहु रहे लोक बिललाई, ऐसा सतगुर जे मिलै, तिसनों सिर सौंपिय, बिचो आप जाई।

तुद कर्मक माया, हे कर्मक माया तुद शरीरा, जां तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो, साचे सुनने नो पठाई, साचे सुनने नो पठाई, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख वडाणी, तां की गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो

भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यों लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कह साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे सतगुरु परतख हुंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिक्का मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आन निवाया हर गुरह पाणा दी बड़ियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो राम कली महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा नाल होंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुर बिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा गोविंदा मेरे गोविंदा
प्राण आधारा मेरे गोविंदा, कृपाला मेरे कृपाला, दान दातारा मेरे कृपाला, दान दतारा अपर अपारा, कट कट अंतर सोहनिया, एक दासी तारी सबल पसारी, जी जंत लै मोहनिया, जिसनो राख सो सच पाख, गुर का शब्द बीचारा, कहो नानक जो

सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा। चाक अगाणी सारंग पाणे, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसे का माणू। कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसे जी बाणू। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला। सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा। अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई। सो प्रभ त्याई सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणिए। कहो नानक घर प्रभ मेरे कै, नित नित मंगल सुनिए। राम कली महला पंजवां, हर हर त्याए मना खिन ना विसारी है। राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है। उर तार हर हर पुरख पूरन, पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता, दुसह दुख भव खंडनो। जगदीश ईस गोपाल माधो, गुण गोविंद विचारी है। बिनवंत नानक मिल संग साधु, बिन सरैन चतारी है। चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा। नाम नरहर निधान जिनकै, रस भोग एक नारायणा। रस रूप रंग अनंत बीठल, सास सास त्याणा। किल विख हरना नाम पुनः चरना, नाम जम की त्रास हरा। बिनवंत नानक रास जन की, चरण कमल है आसरा। गुण बेअंत स्वामी तेरे, कोई ना जाने। देख चलत दयाल, सुन भगत बखाने। जी जंत सब तुझ त्याव है, पुरख पत परमेश्वरा। सर्ब जाचिक एक दाता, करुणा मैं जगदीशरा। साधु संत सुजान सोई, जिसे प्रभ जी माने। बिनवंत नानक करहो कृपा, सोए तुझ पछाने। मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया, बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुर नाम दिया कुशल थिया, सर्व इच्छा पुनिया। जल ने बुझाई शांति आई, मिले चिरी बछुनिया। आनंद हरख सहज साचे, महा मंगल गुण गाया। बिनवंत नानक नाम प्रभ का, गुरपुरे ते पाया। राम कली महला पंजवां, रुण चुनो शब्द अनाहद। नित उठ गाइए संतन कै, किल वेख सब दुख बनासन। हर नाम जपिए गुरमंतन कै, हर नाम लीजे अम्यो पीजे। रैन दिनस अराधिए, जोग दान अनेक क्रिया। लग चरण कमल है साधी है, पाओ भगत दयाल मोहन। दुख सगले पर हरै, बिनवंत नानक तरै सागर। त्याए स्वामी नर हरै, सुख सागर गोविंद सिमरन। भगत गावह गुण तेरे राम, अंद मंगल गुर चरणी लागे। पाए सुख कनेरे राम, सुख निधान मिलया दुख हरिया। कृपा कर प्रभ राखिया, हर चरण लागा भ्रम पौ भागा। हर नाम रसना भाखिया, हर एक चितवै प्रभ एक गावै। हर एक दृष्टि आया, बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा। पूरा सतगुर पाया, मिल रही है प्रभ साध जना। मिल हर कीर्तन सुनिए राम, दयाल प्रभु दामोदर माधो। अंत न पाइए गुनिए राम, दयाल दुख हर शरण दाता। सगल दुख निवारनो, मोह सोग विकार बिखड़े। जपत नाम उदारनो, सब जी तेरे प्रभु मेरे। कर कृपा सब रेण थीवा, बिनवंत नानक प्रभ मया कीजे। नाम तेरा जप जीवा, राख लिए प्रभ भगत जना।
अपनी चरणी लाए राम। आठ पैर अपना प्रभ सिमरह, एको नाम त्याए राम। त्याए सो प्रभ तरे पवजल, रहे आवन जाना। सदा सुख कल्याण कीर्तन, प्रभ लगा मीठा पाना। सब इच्छ पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरिया। बिनवंत नानक प्रभ आप मेले, फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा, संत सलोक। चरण कमल शरणागति, आनंद मंगल गुण गाम। नानक प्रभ आराधी है, विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो, तिस बिन अवर ना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरी है, जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया, एक निमख मनहो ना विसर। गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्व गुण जगदीसर। कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो। बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच। नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। शंत पै संकट काटे, नारायण दयाल जियो। हर गुण आनंद गाए, प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यो रंग लागा। कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो। सदा सदा पल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान। नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। संत सो स्वामी प्रभ रख को, अंचल तांकै लाग जियो। भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै। साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै। जन्म मरण बेकार छूटे, फिर ना लागै दाग जियो। बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक धर्म अर्थ अर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ। सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। शंत सगल इच्छ मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो। आनंद भया वड भागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकि उपमा क्या गणा। बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा। आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सखी। हर एक त्यावो सतगुरु तुम सेव सखी, मन चिंदियाड़ा फल पावो। राम कली महला पंजवा, रुती सलोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म। बांछो साधा धूर, आप निवार हर हर भजो। नानक प्रभ भरपूर, किलविख काटन भय हरन। सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख भंजनो। नानक नीत त्याए, संत जस गाव हो वडभागी हो। कर कृपा भगवंत जियो, रुती महा मूर्त घड़ी। गुण उचरत शोभावंत जियो, गुण रंग राते तन तेजन। जिन्नी एक मन त्याया,
सफल जन्म भया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया, पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्व पापा हंत जियो, बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सात उद्भावसी, नानक नाम आधार, संत सरण साजन परहो, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत शंत, रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो, कर नाह निचल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमूल्या।

मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मन ते बिसरै तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरै गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदि कौ आदेश जियो मिनवंत नानक मया तारहु जुग जुगो एक वेश जियो राम कली।

पर ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेत ओंकार शैल युग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रिभुवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साथ संभाली बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी।

सी जस देहा रहसी राम हृदय एक पाई अंतर शब्द साच लिव लाई रोस न कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली सास दीवानी बावरी सिर ते संकट टली प्रेम बलाई रली सिउ मन मह शब्द आनंद लाल रती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लाहा ना।

घर हुए आथ देख निवै जिस दोए आथ हुए ता मुग्ध सियाना भगत बिहूना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए।

अगमय गोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिय जा लय मलाय। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिय नीत। काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल। कस कसवटी सह सो ताऊ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाऊ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर कर तै करनी कर पाई। जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया। खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए। खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया। अस्थर चीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया। गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावै सुख सहज निवास। गया न आवै आए न जाय, गुर प्रसाद रह लिवलाय। गगन अगम अनाथ अजोनी, अस्थर चीत समाध सुगोनी। हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी। घर दर फिर था की बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत धिया, केते गुर चेले फुन हुआ। काचे गुरते मुक्त ना हुआ, केती नार वर एक संभाल। गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिस ढूंढ कै मह पाया। मेल भया सतगुरु मलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले। गुरमुख तोल तलावे तोले, गुरमुख आवे जाए निसंग। पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद बेद बीचार। गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार। नानक गुरमुख पावे पार, चंचल चीत न रही ठाई। चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, चरण कमल उर तारे चीत। चिर जीवन चेतन नित नीत, चिंतत ही दिसै सब कोय। चेतह एक तही सुख होए, चित वसै राचै हर नाय। मुक्त भया पत स्यो घर जाय, सीजै दे खुलै एक गंड। छिया नित देखो जग हंड, धूप शाम जे सम कर जाण। बंधन काट मुक्त घर आण, छाया शूशी जगत भुलाना।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझे सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, झूर मरे देखे परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

पूजै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमावहु, गुर की करनी काहे तावहु, नानक गुरमत साच समावहु, टूटै नेहो के बोलह सही, टूटै बाहा दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटै गंठ पड़ै विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवै टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताई, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेस करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपने, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपने, निरपव नाम बखान, डूंगर वास तिखा कनी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखे सब कोई, जय पावै तै दे, गुरु द्वारै देवसी, तिखा नवारै सोई, टंडोलत टूंडत हौं फिरी, तह तह पवन करार, पारे तह ते तह पए, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौं बल जाऊं, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊं, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाऊं, जिन नाम दिया तिस सेवसां, तिस बलिहारै जाऊं, जो असारे सो ताहसी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर परसादी तिस सम्मला, तां तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना हो।

कंध गरंत विण नावै क्यों छूटी है जाए रसातल अंत गणत गणावै अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वियोग विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

भीड बानी बिन साचे क्यों छूटी है हर गुण कर्म मानी आप छाए छूटी है वड़ा आप धनी गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे अपने हाथ वडाइया जय पावे तैं दी।

सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार जह देखा तह एक तू अंत ना पारावार थान थनंतर रव रहया गुर शब्दी विचार अणमंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखना।

चाहे पुन आए गए पछताहे, लख चौरासी मेदनी कटै न वधै उताहे, से जन उभरे जिन हर पाया,

अपना तन मन आगै देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द।

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण झुर मुई बिन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमाव है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लभ लोभ बुरे आईया छोडे मनहो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडे आईया जय भावे तैं दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचे नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होआ प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाए रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया

साचो ठाकुर मन वसै कौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मुए बिसंख खसम पछाणै अपना खूलै बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौमै खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाए विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै कौ ईसर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर ना सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे जिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुरे अपने जिन हिरदय दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखिए विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लह राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाउ कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सुधाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारू, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारू, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी।

गत मित शब्दे पाई आद कौ विस्माद विचार कथियली सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियली कट कट साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार ना करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म विस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईए साचै शब्द समाए लिया एक कौ सच एका जाने हौ मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब किश सूजे अंतर जाने सर्ब दया नानक ता को मिले वडाई आप पछाणे सर्ब जिया साचो उपजे साच सुमावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवागौण भया आवागौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बख्श।

गुर कै शब्द सो मुक्त भया, नानक तारे तार नहारा, हम मैं दूजा पर हरिया, मन मुख भूले जम की कान, पर कर जो है हाने हान, मन मुख भरम पवै बेबान, वे मार्ग मूसै मंत्र मसान, शब्द ना चीने लवै कुबान, नानक साच रते सुख जान, गुरमुख साचे का पौ पावे, गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै तरियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर बिद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपियै अंतर प्यार, गुरमुख पाईऐ शब्द अचार, शब्द भेद जाणै जानाई, नानक हम मैं जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह ओपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाए, साच रतो पत स्यो घर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर बिद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारे पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निस्तारी, नामे राते हम मैं जाए, नाम

बारहा मह जोगी परमाई सन्यासी छे चार गुर कै शब्द जो मर जीवे सो पाए मुख द्वार बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे से वड भागी जिन्नी सच रखिया पुर धार गुरमुख रतन लह लिवलाय गुरमुख परखै रतन सुभाय गुरमुख साची कार कमाय गुरमुख साचे मन पतियाय गुरमुख अलख लखाए तिस भावै नानक गुरमुख चोट ना खावे गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागे सहज ध्यान गुरमुख पावे दरगाह मान गुरमुख भौ भंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराई नानक गुरमुख मेल मलाय गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावे घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर भरमै आवै जाई।

यार पवजल शब्द लंघावन हार पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला कथ कथा ले रहो निराला नानक जुग जुग गुरु गोपाला एक शब्द जित कथा विचारी गुरमुख हो मैं अग्न निवारी मैन के दंत क्यों खाइए सार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हिवे का घर मंदर अग्न पिराहन कमन गुफा जित रह अवाहन इत उत किस को जान समावे कमन ध्यान मन मन समावे हौ हौ मैं विचो खोवे दूजा मेटे एको होवे जग करड़ा मनमुख गावार शब्द कमाइए खाइए सार अंतर बाहर एको जाने नानक अग्न मरे सतगुर कै पाने सच भै राता गर्भ निवारे एको जाता शब्द विचारे शब्द वसै सच अंतर हीया तन मन सीतल रंग रंगिया काम क्रोध बेखे अग्न निवारी नानक नदरी नदर प्यारी कवन मुख चंद हिवै घर छाया कवन मुख सूरज तपै तपाया कवन मुख काल जोहत नित रहै कवन बुद्ध गुरमुख पत रहै कवन जोध जो काल संघारै बोलै बाणी नानक बिचारै शब्द भाखत सस जोत अपारा सस कर सूर वसै मिटै अंधियारा सुख दुख सम कर नाम आधारा आपे पार उतारन हारा गुर पर चै मन।

अपना पुन घट घट सुन का जाने पेव आदि पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाए मिलिए सुख होवे गुरमुख जागै नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवै सो के तठाए क्यों तत न बूझै चोटा खाए जम दरबादी कोई न राखै बिन शब्द नाही पत साखै क्यों कर बूझै पावै पार नानक मन मुख ना बुझै गवार कबुद्ध मिटै गुर शब्द बीचार सतगुर भेटै मुख द्वार तत ना चीनै मन मुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए मानै हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावै मान साच वखर धन पल्लै होए आप तरै तारे पी सोए सहज रत्ता बूझै पत होए तां की कीमत करै ना कोय जह देखा तह रहिया सुमाए नानक पार परै सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है इस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचों भरम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाय शब्द गुरु भव सागर तरिया इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाण त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटै शब्द वसाई ता मन चूकै अहंकारू

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अलि पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस थिर रही है कित भोजन तृप्तासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होए तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख मैं विचों खोवे तव नानक सहज समावे इहो मन निश्चल हृदय बसियली गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

सच सपाखै सच रपै रंग कबहू ना जावै जां एहो हिरदा देह ना होती तो मन कैठै रहता नाभ कमल अस्थंभ ना होतो ता पवन कमन घर सहता।

शब्द सोसार गौण गगन जब तब है न हो तो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जागे उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरे है दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रहै समाई नामे नाम रहै बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हूं मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणे शब्द काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामै ते सुख होई नामै ही ते सब प्रगट होवै नामे सोजी पाई।

है सहसा गया बलाई, ना किस बीजे ना उगवे, जो बख्शे सो खाए, अंब है सेती अंब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाए, नानक गुरमुख चा

कोई। राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिए क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी हों मैं छड़ै ना कोई। गुर प्रसादी हों मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाऊ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ जा कौ नदर करी पौड़ी। दूजा भाउ रचायो त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन। हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझ बिचारा। सब किस तेरा खेल है सच सिरजन हारा। जिस भावै तिस बख्श लै सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावै। माया नू फिरै तपा सदावै परमे भूला सब तीर्थ गह। ओह तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मूखंतर पावै। महला तीजा सो तपा जे इहो तप काले सतगुरु नो मिले शब्द संभाले। सतगुरु की सेवा इहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावै मान पौड़ी। रात दिन स उपायन संसार की वर्तन गुरमति घट चानना अनेर बनासन। हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिन। सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भन। शब्दे ही सोजी पई सच्चै आप बुझाई। श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए नायाखियन। जिनके चित में भरम तिस दै दित्तै नानका। तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद। ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका। विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन। जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बहले भेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन। पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन पौड़ी। अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराव। घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाव। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाव। सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाव। सब सच्चो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

रत बिन तन ना होई, जो सह रते अपनी तिन तन लोभ रत ना होई, पै पै तन खीन होए लोभ रत विचों जाए, ज्यो बैसंतर धात सुध होए त्यों हर का पौ दुरमत मैल गुआई, नानक तेजन सोहनी जो रते हर रंग लाए, महला तीजा राम कली राम मन वसिया, ता बनिया शिंगार गुर कै शब्द कमल बिगसिया, ता सौंपिया भगत भंडार

मनमुख सिंगार ना जाननी जासन जन्म सबहार बिन हर भगती सिंगार करह नित जम्मह हुए खुआर सह सारे विच सोभ ना पाईनी अग्गै जी करी सो जाने करतार नानक।

उतरै कोई कड्डो एहो विचार। सतगुर मिले ता नाम दड़ाई सब किल वेख कटन हार। नाम जपे नामो अरादी तिस जन को करहो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी। तुद जे वड़दाता नाही किसे आख सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथो होमै जाई है। रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है। जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है। घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसे प्याई। सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जे सतगुरु भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन। सच्चै लाए सच लगे सदा सच समालेन। नानक आए से परवान पहे जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन। ओए भाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कसत कमावंदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिष्ट सब कीती। एक कूड़ को सत लायन मनमुख वे गूती। गुरमुख सदा त्याई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है इन वात सपीती। नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाई। गुरु दी

कै घर हिंदू आवै सूत जनेऊ पढ़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता धूता थाए ना पाई मुसलमान करे वडियाई बिन गुर पीरै को थाए ना पाई राह दसाए उथे को जाए करनी बाजो किस्त ना पाए जोगी कै घर जुगत दसाई।

सो जाए सियान है, होर पकड़ हिंदू मुसलमान है, सबना का दर लेखा होए, करनी बाज हो तरे ना कोई, सचो सच बखाने कोई, नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी, हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना, हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित कर, सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिरह, ना सत मूंड मंडाई केसी, ना सत पढ़िया देस फिरह, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तशाव है दुख सह, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काहू चरह, जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई, जिसनो दे तिसे आए मिलै, नानक ताको मिलै वडाई, जिस घट भीतर शब्द रवै, सब घट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खवाई तिस कौन कह, जिसे दिखाला वाटड़ी किसे पलावे कौन, जिसे पलाई पंद सिर किसे दिखावे कौन। महला पहला। सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे।

सो औ तूती जो तू पै आप पिखिया भोजन करे संताप औ हट पटन मह भीख्या करे सो औ तूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्द करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े ना कंद बोले गोपी।

काया पखाले, काया की अगन ब्रह्म पर जाले, सुपन बिंद न दे झरना, तिस पाखंडी जरा न मरना, बोले चरपट सत स्वरूप, परम तंत मह रेखना रूप, महला पहला सो बैरागी दे उल्टे ब्रह्म, गगन मंडल मह रूपै थम, अहन सकंतर रह ध्यान, ते बैरागी सत समान।

पौड़ी, हर मंदिर सोई आखी जिथों हर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया, सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी कर माहे बधाता, मनमुख हर मंदिर की सार ना

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एत कमाणे सदा दुख, दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूहू केहो संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार, ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उधरे, ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावे सो करे, जो दे सो सहना। महला पहला। नानक आखै रे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही। तलबा पौसन आकिया, बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता, हुसी आए तई। आवन जान ना सुजई, पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका, ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपै। हर की कीमत ना पवे, किस कहन ना जापै। गुर प्रसादी सलाही है, हर भगती रापै। सब मन तन हरिया होया, अहंकार गुआपै।

कोड़ी काया हंस तुर मेल करता लिख पाया सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरै गुण माहि समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया सब किछ आपे आप है आपे दे वडियाई सलोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रतना पर

गुथली रतनी खोली आई वखर तै बणजारिया दुहा रही समाई जिन गुण पल्ले नानका माणिक वणजह से रतना सार ना जाननी अंधे बतह लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जै बजर कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुली जै अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनी जै तित घट अंतर चानना कर भगत मिली जै।

सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एह ना आखियन जिन मुख लोइन नाहे, अंधे से ही नानका खसम हो कुथे जाहे। महला दूजा साहेब अंधा जो किया करे सुजाखा होए, जेहा जाने ते हो वरतै जे सौ आखै कोई। जितै सो वस्त ना जापई आपे वरतौ जान, नानक गाहक क्यों लई सकै ना वस्त पछाण। महला दूजा सो क्यों अंधा आखियै जे हुक्म हो अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहियै सोए। पौड़ी काया अंदर गण कोट है सब दे संतर देसा, आपे तारी लाइयन सब मह परवेसा। आपे सिख साजियन आप गुप्त रखेसा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटिएसा। सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावन रात आहाड़ देहु काम क्रोध दोए खेता, लब वत्र दरोग बियो हाली राह कहेता। हल विचार विकार मन हुक्मी खट्टे खाए, नानक लेखै मंगिया औत जनेंदा जाए। महला पहला। पौ पोए पवित पानी सत संतोख बलेद, हल हले मी हाली चित चेता वत्र वक्त संजोग। नाउ बीज बख्शीस बोल दुनिया सगल दरोग ना।

दूजे पाए बोले, दूजे पाए सदा दुख है, नित नीर वरोले, गुरमुख नाम ते आई है, मत तातक डोले, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोले, आपे परम भुलाए दा, किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही हे, जल मैं जंत उपायन, तिना पे रोजी दे।

नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है महला पहला। नानक एहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल, मनुआ अंध ना चेतई पड़े अचिंता जाल। नानक

साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता गुरमुख सच्चा मन वसै सच सौदा कीता सब किस घर ही माहे है वडभागी लीता अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता आपे मेल मलायन आपे दे बुझाई श्लोक महला पहला वेल पंजाया कत बनाया कट कुट कर खुंभ चढ़ाया लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सुई

सचो पाइए कूड़े कूड़ा माना। नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पया परवाना। महला पहला साहिब मेरा उजला जे को चित करे। नानक सोई सेवी है सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवी है जित सेवै दुख जाए। अवगुण वंजन गुण रवह मन सुख वसै आए। पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेशदा। गुरमुख पतियायन एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन। जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाए लायन। नानक नाम ते आई है सच्ची वड्याई। शुद्ध राम कली की वार महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पंजवा। जैसा

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्मटिया अगम अथाह बेअंत परे परटिया आपे वड पातशाह आप वजीर रटिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुरु देहो देखाल आऊं तिस देवा मन अपना नित हिरदय रखा संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

सलाहिए जिस रखै कृपा धार रिजक समाहिए कोई ना किस ही वस सबना एक धार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनंद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणी है गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवां भीड़ों मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारजे आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै सलोक महला पंजवां धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारै जा।

लोहराई गुरपुरै मिलाया जन्म मरण दुख जाय जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाय महला पंजवां तन सो वेला घड़ी तन तन मूरत पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हा जो गई जिस मिलया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौं बलिहारी तिन जे खसम है पाणिया सलोक महला पंजवां हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन करन समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग।

जाने टिचर रखन गंड जित दिन किछ ना होवै तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई।

साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल सीती लाए सवारी कर्महीन धन करै बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मन सा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराध मन सब किल विख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार ऊनी छड़िया माया सुआवड़ा धन संचिया नाम अपार अठे पहर इक तै लिवै मन्ने न हुक्म अपार जन नानक मंगै दान एक देहो दर्श मन प्यार पौड़ी जिस तू आवै चेत तिसनु सदा सुख जिस तू आवै चेता

हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुटे क्या फल पावे, हंसा विच बैठा बग ना बनी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जां हंस सभा विचार

पैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिस का कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो भई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थी जिसनो तेरी मया ना पोहै अग्नई किसनो सदा दयाल जिन गुर ते मत

आवह वस बहुता दान दे सब को तेरे वस अगम अगोचरा तू भगतां कै वस भगतां दान तेरा। श्लोक

होगा हरख आनंद हुक्मे जपै निरोधर गुरमंद हुक्मे आवन जान रहाई नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावै गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार वोह ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवै कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा एह सुआओ जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो भाव सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाय नानक नाम जपत सुख उपजै दरगाह पाई थाऊ महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे भाणे जप तप संयमो भाणे ही कड ले भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे भाणे भोग पगाएंदा भाणे मनह करे भाणे नरक सुर्ग अवतारी भाणे धरन परे भाणे ही जिस भगती लाए नानक विरले हे पौड़ी वडियाई सच्चे नाम की हौ जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणे दिन सरहण तेरा नाउ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है रोग सोग दुख वंजै जिस नाउ मन वसै तिसह प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया सलोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौ तुद बिन अड ना लहंदी महला पंजवा सस वरायण नानक जीओ ससुरावादी जेठो पौ पोलू है हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारणो जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारनो जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो जिसनो एको रंग भगत सो जान।

ना कोई। जाचक सदा जाचो है महला पंजवा, देह सजंदड़ी ऊन मचूना। गुर सज्जन जियो तराया, हब्बे सुख सुहेलड़ा सुता। जिता जग सवाया पौड़ी, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत। सिर शाह पातशाह, निश्चल चौर छत। जो भावे पार ब्रह्म सोई सच न्याऊं, जे भावे पार ब्रह्म

रंग दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवा आहर सब करदा फिरे आहर एक ना होए नानक जित आहर जग उदर है विरला बूझै कोई पौड़ी वड्डी हूं वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर जिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता श्लोक महला पंजवा सतड़े बाजार सोहन विच वपारिये वखर एक अपार नानक खटे सो धनी महला पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम किसहु के नाही जिन एहो रचन रचाया तिस ही माहे समाहे पौड़ी सफले ओ बिरख सुहावड़ा हर सफले अमृता मन लोचै उन मिलन को क्यों वंजै किता वरना चेहना बाहरा ओहो अगम अजिता ओहो प्यारा जी का जो खोले पिता सेवा करी तसाड़िया मैं दस्यो हो मिता कुर्बानी वन्या वारने बले बल किता दसन संत प्यारिया सुनो लाए चिता जिस लिखिया नानक दास तिस नाओ अमृत सतगुर दिता श्लोक महला पंजवा कबीर धरती साधके तस्कर बैसह गाहे धरती भार ना ब्यापई उनको लाहू लाहे महला पंजवा कबीर चावल कारनी दुख को मोली लाए संगक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय पौड़ी आपे ही वड परवार आप एकातिया

ताली धर्म राए है देवता लै गल्ला करे दलाली सतगुरे आखे सच्चा करे सा बात हुए दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करतै बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्ले हुए जंगाली दर दरवेश खसम दै नाए सच्चे बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होरे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखे के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासत शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौन चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समानी ज्योत माहे आप आपै सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब उम्मत।

क्या सलाही सच्चे पातशाह जा तू सुगड़ सुजान दान जे सतगुरु भाव सी सो सत्ते दान नानक हमदा सत्र सिर।

ग्रहण में लो। गुर का शब्द गुण की नरे, तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर, काट काट कस दीन रे। कोई है रे संत सहज सुख अंतर, जाको जप तप देव दलाली रे। एक बूंद भर तन मन देवो, जो मद दे कलाली रे। रहाउ पवन चतर दस पाठी कीनी, ब्रह्म यगन तन जारी रे। मुंदरा मदक सहज धुन लागी, सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संयम, रव सस गहन देओ रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत, एहो महारस पेओ रे। निचार धार चोवै अत निर्मल, एह रस मनुआ रातो रे। कह कबीर सगले मद छूछै, एह महारस साचो रे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, पौ पाठी मन धारा। सुख मन नारी सहज समानी, पीवै पीवन हारा। औदू मेरा मन मतवारा, उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया। त्रे भवन भया उजियारा, रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी। पियो महारस भारी, काम क्रोध द्वे किए जलेता। छूट गई संसारी, प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत। सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मत माता। उचक ना कबहू जाई, तू मेरो मेर प्रभत स्वामी।

कैसी कांसी हम एक कर जानी हम निर्धन ज्यो एहो धन पाया मरते फूट गमानी करै गमान चुभ तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान ना कटते अपने गुर प्रसादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे जाके पाई जगत सब लागे। सो क्यों पंडित हर ना कह काहे मेरे ब्राह्मण हर ना कह। राम ना बोले पांडे दोजक पर है रहाव। अपनी ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है। चौदस अमावस रच रच मांग है कर दीपक लै कूप पर है। तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब मर है। तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्र रस भरिया। ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी।

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाव बुद्ध बेभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग पीतर जन्म कमन फल पाया भावनिद धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाऊ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटे जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंदन पाया मुखते गुरे अनल बुझाया जब नक सिख इहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहाउ उल्टी ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदी अले चक्र पोंगा पेटी अले रायन संगा चूकी अले मोह मयासा सस तीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुर लीना तह बाजे अनहद बीना बकते बक शब्द सुनाया।

आकाश मदे परम यले पंच जनास्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा वेदी अले जैसे कनक कला चित मांदी अले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावोगो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावोगो बैरागी रामह गावोगो शब्द अतीत।

दोए सम कर राखो ब्रह्म जोत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर सिंह राता सुन समाद समाओगो माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई ना किसी केरा जैसे तरवर पंख।

जय छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना की जय हर का नाम नित नित हली जय रहाउ गंगा जो गोदावर जाइए कुंभ जो केदार नाइये गोमती सहस गौदान की जय कोट जो तीर्थ करे तन जो हिवाले।

रह कीजै, आत्म जो निर्माल कीजै, आप बराबर कंचन दीजै, राम नाम सर तऊ ना पूजै, मनह ना कीजै रोस, जमह ना दीजै दोस, निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै, जस रथ राए नंद, राजा मेरा राम चंद, प्रणव नामा तात रस अमृत।

वचन हिरण हुए कैसे, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कब है ना नासी, कहो रब दास सब है नहीं समझस, भूल पर

क्या निशानी, तह बाजे शब्द अनाहद बाणी, तह चंद ना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजै ज्ञान दुर्मत सीजै, अमृत रस गगनंतर पीजै, एस कला जो जाने पियो, भेटै तास परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर खाती, जागत रहै सो कबहो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै, बीज मंत्र लै हिरदै रहै, मनुआ उल्ट सुन मह गह, जागत रहै ना अलिया पाखै, पांचो इंद्री बस कर राखै।

है हारे असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजार जरे सो निचार चरे जगन्नाथ स्यो गोष्ट करे चौ मुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रह मन मानक रत्ना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर शंख कान गाजे।

बालक स्वामी हमरा कोह वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरेओ प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शीपा दुष्टारेओ प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गाव है स्वामी हौ बल बल बल तिनगे भवन भवन पवित्र सब किए जह धूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम तुम वड वड पुरख वडगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठ है बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर देवस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ है हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पग रे नरवाल सब दाल पांच दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद पय हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले पय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कल युग विति उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन्ना हर प्रभ जा

मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते, सो सदा सदा तुद त्यावे, कमन योग कमन ज्ञान त्या

सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवे नट नारायण महला पंजवां दुपदे

शरीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई वीर खुले ब्रह्म पीत मिले।

अंचला गहायो जाने अपने को मन भी दो प्रेम की खोरे जस गावत भगत रासे उपजेओ माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना प्रीत ना कबहू थोरी।

ते आठ पहर गुण गायन रहाओ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगै तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो।

खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान नट महला।

दयाल ऊठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरा नानक दर्शन हाल नाक

लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवे है जम काल खड़ा सिर मारी उगवे दिनस आल जाल संभाले बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारी साकत नर सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख कर्ज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींच।

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारे रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजा को, लै बैकुंठ सधारी,

बिचारी। सत संगत मिलै ता दृढ़ता आवै, हर राम नाम निस्तारी। जब लग जियो पिंड है साबत, तब लग किसना सम्हारी। जब घर मंदर आग लगानी, कड कूप कड्डै पनेहारी। साकत स्यो मन मेल ना करियो, जिन हर हर नाम बिसारी। साकत बचन बिशुआ ज्यो डसी, तज साकत परै परारी। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई, लग साधु संग सुवारी। गुर के बचन सत सत कर मानी, मेरे ठाकुर बहुत प्यारी। पूर्व जन्म परचून कमाई, हर हर हर नाम प्यारी। गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

गुर सरन प्रभु रखवारे ज्यो कुंचर तंदुए फकर चलायो कर ऊपर कड निस्तारे रहाओ प्रभ के सेवक बहुत अतनीके मन श्रद्धा कर हर तारे मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

सब एका नदर निहारी, हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई, सब चेरी जगत समारी, आप दयाल दया दान देवे, विच पाथर कीरे कारी, अंतरवास बहुत मुशकाई, भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी, बन बन ढूंढ ढूंढ फिर थाकी, गुरपुरै घर निस्तारी।

जन मान प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपने आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे सिष्ट सवारी जन

आप निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह कहो हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन भारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी

मन धीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देही गुर

सतसंगत गुर निस्तारी, प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारी, मेर समेर मोर बहु नाचै, जब उनवै कन कन हारी, साकत को अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारी, ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारी, संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले है पर उपकारी, संतै संत मिले मन बिगसै, ज्यो जल मिल कमल सवारी, लोभ लहर सब सुवान हलक है, हलकियो सबह बिगारी, मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारी, राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो किरपा तारी, नानक मैं

प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो

ठाकुर हर गुरमती प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार।

राम नाम सुखदाता सत संगत मिल हर साद आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिलिया हर प्रभ जाता दुरमत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया किन पूछो हर की बाता पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म वधाता ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मन तन राता हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब किल विख पाप गवाता राम रसायन जिन गुरमत पाया इनकी उत्तम बाता इनकी पंक पाई वडभागी जन नानक चरण पराता माली गौड़ा महला चौथा सब सिद्ध साधक मुन जना मन भावनी हर त्यायो अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेतेओ हर रायो हर आन मेलेओ सतगुरु खिन बंध मुक्त करायो प्रभ मस्त के धुर लिखिया गुरमती हर लिवलायो पंच शब्द दरगाह बाजिया हर मिलेओ मंगल गायो पतत पावन नाम नरहर मंद भागियां नहीं पायो ते गर्भ जोनी गाली है ज्यों लोन जलह गलायो मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर गुर चरण मन मैं लायो।

राम नामे मत गुरमत राम रसाला रहाउ गुरमत नाम त्याई हर हर मन जपिए हर जपमाला जिनकै मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला जिन हर नाम त्याया तिन चूके सर्ब जंजाला तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला हम बारक किशु ना जानहू हर मात पिता प्रतपाला पर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला बहु मैले निर्मल होया सब किल बिख हर जस जाला मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला माली गौड़ा महला चौथा मेरे मन हर भज सब किल बिख काट हर हर उरतार्यो गुरपूरै मेरा सीस कीजै गुरवाट रहाउ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै तिस मन देवो कट काट हर साजन मेलियो गुरपूरै गुरबचन बिकानो हट हाट मकर पराग दान बहु किया शरीर दियो अध काट बिन हर नाम को मुक्त ना पावै बहु कंचन दीजै कट काट हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट त्रिकुटी फोर भरम पौ भागा लज भानी मटकी माट कल युग गुरपूरा तिन पाया जिन तुर मस्त

जीव जंतर करे प्रतपाल, सदा सदा सेवो कृपाल, सदा धर्म जाकै दीवान, बे मोहताज नहीं किश कान, सब किश करना अपने आप, रे मन मेरे तू तां को जाप, साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हुए उधार।

सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बिकार तज सब

सलाही है जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाऊ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइयै जे बहुड़ दुनिया आइयै सज काया पट हंडाई

मारू महला पहला घर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुह लेख पए ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तौ गुण नाहीं अंत हरे चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुग है नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत पई भया मनूर कंचन फिर होवै।

निर्मल मुझार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह ना जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाव बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस।

ना छोड़स किसन प्रीत ज्योरे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्योरे एक पाखंडी नाम ना राच्य है एक हर हर चर

पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गब गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

ताही बिन दर्शन कैसे रहो स्नेही। मारू महला पहला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सभागा गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई,

अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

सहसा तोड़े भरम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए। गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो। हम है जलिया मनो विसारी,

आनंद आए हर नाओ सतगुर कै बचन अराद तू अन दिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख को जानिए जा सतगुर।

जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे।

गण गंधर बे जपियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपिया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपिया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

सुनाई प्रभ गुरमत हर हृदय सुमानी जप हर हर कथा बड़ भागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरे नाम सुमानी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पानी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाउ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाईए कथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पानी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मेले पुरख सुजानी गुरपुरख पुरख मलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी बड़ भागी गुर सेविया हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

साग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली।

हर हर का मन मानिया सो सेवक चौ जुग चौ कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छडाई दियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन

सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए दुनी रहाओ। देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया। राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरपै अत डरपै धर्म राया। सगल समगरी डरह व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा। मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बदारी। मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ। वाल्मीक सुपचारो तरयो बदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी। कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो।

मान्यो भयो कृपाल ठाकुर सेवक को सबरे हलत पलाता धन सेवक सफल ओहो आया जिन नानक खसम पछाता।

पतत पिए खिन पीतर महमा कथन न जाय निरपौ पये सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई।

एक जिस को कबू ना गाव सरी छोड़ जाए खिन पीतर ताको वा को फिर ताव सरी अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी बैरी संग रंग रस रचिया।

त्रै गुण भ्रम छूटा जो प्रभ भये सहाई मारू महला पंजवां अंतर जामी सब बिद जाने तिस ते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग लै जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाए करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजे तन पीतर।

हुकुम बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग थार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बिहावथ हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावथ सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निह चल जानथ पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानथ खतरी ब्रह्म।

लगह तपत थम गल लाय रे नर काय पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदी निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लो

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसी बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह मनिया।

जी अखुट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकाड़ घड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खिलाया था। कहो नानक परम गुर खोया ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा जिसह साज निवाजिया

ठंडा परम का मन पयो परगास काटी बेरी पगहते गुर कीनी बंद खलास आवन जान रहे हो तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रहाओ जब ते साधु संग पया तौ तो

आओ तपसी कर कह दे ही सादी मनवा दह दिस ताना ब्रह्मचार ब्रह्मचज कीना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए कह तीर्थ भ्रम्यो उस मह क्रोध बिगाना कुंगर बांध पए राम।

मुख राग अलापे मन नहीं हर हर गावा हर कसोग लोभ मोह रहत है निर्मल हर के संता तिन

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहा दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाऊ रूप रंग खुशियां मन

माया रंग बिरंग खिन मह ज्यो बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड़ियाई सुबा नानक खसम प्यारा मारू महला पंजवां कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार उत्पाती किया दिन सब राती वन त्रिण त्रि भवन पानी।

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिए जिस सिमरत अवगुण सब ढकिए चरण कमल उरे अंतर तारू बिठिया बन ते जियो उधारू।

सत करमानी हित लायो सच मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदलै जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझै करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत ना जाए मटायो पास पंखी।

उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा हम में मूठो बेचारा अनक दुख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिसको होत कृपाल स्वामी सो जन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन जिस पावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काड नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

मेरा मारू महला पंजवा कत कौ डहकावो लोगा मोहन दीन किरपाई ऐसी जान पाई सरन सूरो गुरदाता राखे आप वडाई रहाओ भगतां का आज्ञा का।

पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याइए।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवां।

सगल तिहानु तजियो मन ते अभिमानु निश्चल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन तृप्त अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हार।

चेत मन मह हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतरह पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक।

होशे अमर जुग जुग जियो रहाओ। नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो। मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रितपाल माता।

देख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महाभोजन माहे तुलहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन कन साथ करन कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाउ साध संगत गुण उचारण।

वैदो ना वाई भैणो ना पाई एको सहाई राम ही कीता जसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरहो प्रधान ही कट कटे वासी सर्ब निवासी अस्थिर जाका थान ही आवै ना जावै संगे समावै पूरन जाका काम ही भगत जना का राखण हारा संत जीव है जप प्राण आधारा करन कारण समरथ स्वामी नानक तिस कुर्बान ही।

बढ़ाई, जेहे नर जस कृपा निद गायो, ताको भयो सहाय। कहो नानक मैं एही पुरुषै, गही आन सरनाई। मारू महला नौवां, अब मैं कहां करौं री माई। सगल जन्म बिछियन सिउं खोया, सिमर्यो नाही कनाई रहाओ। काल पास जब गर्भ मेली, तेहे सुध सब बिसराई। राम नाम बिन या संकट मह, को अब होत सहाई। जो संपत अपनी करमानी, सिन मह पई पराई। कहो नानक यह सोच रही मन, हर

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो। मारू अष्टपदियां महला पहला, कर पहला

साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

यासमुंद मजार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लंघावन हार तिथै पवन ना पावको

कछ नहीं गुरपुरै पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुपर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजै बिन भागा तन नाही जिनकै नाम ना मन वसै।

है सुख नहीं, गाडे लादे शार विछड़िया मेला नहीं, दुख घणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही, मैं भूले तू समझाए, भूले मार्ग जो दसे,

लाला सो जीवत मरे मर बिचो आप गवाए बंधन टूटे मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए सब

चलना मुख अमृत नाम। मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मिल है मन चाओ, कीता क्या सलाही है कर देखै सोई, जिन की आसु मन वसै मैं अवर ना कोई। सो साचा सलाही है साची पत होई, पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला, पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत

थी पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो बेद पढ़ंतिया मूठी बिन माने नानक कीमत।

कर ही रह ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पीटै दुर्मत कुमन की रह जसंतर भवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा हुए बधेरे काची पिंडी शब्द ना चीनै उधर भरै जैसे ढूरै बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर कै शब्द एक लिब लागी तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई खिंथा चोली माया तारी घर घर मांगे जग प्रबुद्ध मन अंधे पतहारी परम फलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूजे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर कीनस आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अठ सठ तीरथ परम बगूचे है क्यों मल धोपै पापै छाणी खाक बेभूत चढ़ाई

दिस तावे बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवे माया का देवाना कितना मिटई हुक्म ना बूझे पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी भारी स्त्री तज कर काम व्यापिया।

पानी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी।

योग उपाय रकत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाई है।

सखी हमारू कंत सच विछोड़ा ना थी सो सहो रंग रवंत सबे रुती चंगिया जित सच्चे सिहने सा धन कंत पछाणिया सुख सुती निसडेह पत्तन कूके पातनी वंजो त्रुक बलाड़ पार पवंदड़े डिठ मैं सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए।

बेद संभाल है बिख भूले लेखारी कल्लर खेती तरवर कंठे बागा पहर है कजल चर है यह संसार तिसै की कोठी जो पैसा है सो गर्भ जर है रैयत राजे कहां सबाए दोहो अंतर सो जासी कहत नानक गुर सच्चे की पौड़ी रहसी अलख निवासी मारू महला तीजा घर पंजवा अष्टपदी।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे गुर कै

धरती जा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद लाख चौरासी भ्रमते द्राब जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरा बिख्या स्यो उरजायो रहाओ रत्न जवे हर बन जन आयो कानर लाद चलायो जे कर्म है तुद रहना बसना सो कर कीत न आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो उत्तर कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मैं उरजायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारु महला पंजवा कर अनग्रह राख लीनो पयो साधु संग हर नाम

सखा बंदप अंतर जामी जान रहाउ संसार सागर जिन उपायु शरण प्रभ की गही गुर प्रसादी प्रभ आरादी जम कंकर किशना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखनहार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह ओचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासक मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण सर्वस संतना की रास।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किश नीका।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया। हर जस तुम संग गावना संत किरपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना। दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना। नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरे मन पावना। संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना। मोहे निर्गुण को कोई ना राखै संता संग सुमावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना। मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना। रहाउ पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना। खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना। पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना। भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना। बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना। मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना। मिलियो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपाल।

ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दुहू व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भओ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जो नी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लाव है तित तित लगना।

जोबन तन शोड वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लेंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खाते अंदर

सब आपे एक कड्डे एक लहर व्यापे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर किरत विहानिया मेहर करे ता खसम त्याई संता संगत नरक ना पाई अमृत नाम दान नानक को गुण जीता नित वखानिया।

अनाह ध्यान देन कट कट शब्द रजाई हे। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक

भये देवानी शब्द सहज रस अंतरमानी आपे मुकत तृप्त वरदाता भगत भाए मन भाई आप निरालम गुरगम ज्ञाना।

संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अदली प्रभ आपे परम भेद पहु जाई।

राई जिस बख्शे तिस दे वड्याई सब सहदाता तिल ना तमाई पर पुर धार रहया ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है क्या सलाही अगम अपार है।

तन जलै पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाईए साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गले मन स्यो लूजै मनसा मन है समाई हे माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत।

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नाव है, ज्यों तुद भावै तिवें चलाव है, हठ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी,

तारी गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपह मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी।

शब्द मलाई जांत से पाना सहज समाए त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पतीजै अलख अपेवा भगतां का गुण।

दरगाह पैंदी गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी ज्यों वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी। नाम बिना किस साधना लागे हर बिसरे दुख पाई है। पूजन साच मिले।

मन तन अर्प मिलै जग जीवन हर सिउं बणत बनाई प्रभु की गत मित कोई ना पावै जे को वड्डा कहाए वडाई खावै साके साहेब तोट ना दाती सगली तिन्ह अपाई है।

है पर हर दुख दालद जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कल मल मैल नाही ते निर्मल होए रह भगत लिवलाई है। गूजो हर जन सतगुर बाणी एहो जोबन सास है देह पराणी। आज काल मर जाइए प्राणी हर जप जप हृदय त्याई है। छोड़ो हो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हउमै दोह मार्ग पचह पचाई है। छोड़ो हो निंदा तात पराई पढ़ पढ़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यूं तरिये पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिख चेला तिथे अवर न कोई जियो अकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी पड़ दज

कहो कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी क्यों पव जल पार लंघाई है। देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है। ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सत्यारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है। गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैसह तखत सो शब्द विचारे तत लह अं

रह कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजे पेंजे रली करीजे, बिन अब भगती बाद मरीजे।

शब्द घर जाने, किसे ही मंदा आख न चले, सच खरा सचियारा ही, साच बिना दर सिजे न कोई, साच शब्द पेंजे पत होई, आपे बख्श लए किस पावे, हउ मैं गर्भ निवारा ही, गुर किरपा ते हुक्म पछाणे।

कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे।

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही सृष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जलते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साकत पोगाई है जैसा की कहते सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

फल पावहु साच बखर के वपारी बिरले लैला सौदा की नाही हर हर नाम बखर लै चलोह दर्शन पावहु सहज महलोह गुरमुख खोज लह जन पूरे यो समदर्शी की नाही प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन को समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

नाही। एक दर सेव है दर्ज बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छाई। हो मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हो मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मन मुख अंदले सो जी नाही, आवह जाही मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। फिर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर फिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह

अगन बेख झाला अपथ पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुर आ राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजे पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद ताना नाम जपो सुख साराही सतगुर तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गढ़ई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रले तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो हो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावै है।

सतगुर मिले तो मनुआ टेक, राम नाम बेसरन परेक, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जस दरगाह प्यारा ही, राम नाम साधु सरनाई, सतगुर बचनी गत मित पाई, नानक हर जाप

राम जपहु अंतरगत ध्यानी लालच छोड़ रचहु अपरंपर यूं पावहु मुक्त द्वारा ही जिस बिसरै जम जोहन लागै सब सुख जाहे दुखा फुन आगै राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पारा ही पंच तत् मिलकाया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइये शब्द विचाराई सत संतोख रहो जन पाई।

मूढ़ कपट महती का अहन सनिंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डांड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे ओ पार अफारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पव जल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई हर जप

रहा ताही, चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला, साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही, अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, दिन मह पांच तत् घर वासा, सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हो मैं प्रांता ही, इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै, अंतर चोर मोह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही, दुंदर दूत पूत पीहाले, खिंचो तान करह बेताले, शब्द सुरत बिन आवै जावै।

कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे सह पछाता ही अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन, अहनस निर्मल ज्योत सुबाई।

बैरागी मन मनसा मार समाताही सतगुर सेवह से परधाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाताही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर।

ओ अंत ना जानी जा को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुद्धता हाए जन्मे को वाजह वाधाए सोहे लड़े अज्ञानी गाए जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर सहाए संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

राम नाम घट अंतर पूजा अवरना दूजा काहा ही ओढ़ना कथन है सिफत सजाई ज्यों तुद भाव है रह रजाई दरगाह पैंदी जान सुहेली हुक्म सच्चे पातशाही क्या कहिए गुण कथ है कनेरे अंत ना पाव है वड्डे वडेरे नानक साच मिले पत राख हो तू सिर शाह पातशाही मारू महला पहला दखनी काया नगर नगर गाड़े अंदर।

जाने जो किस करे सो अपन पाने लख चौरासी जी अपाई पाने सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निचो होवे मनमुख आप गणाई रोवे नाम भुला ठौर ना।

कोई, गुर बिन सो जी किन ना होई, साथ मिले सो साथी पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरहों विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे

तुझ ते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चांद ना सूरज।

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा।

गुर शब्द सुनाया, कर कर देखे हुक्म सबाया, खंड ब्रह्मांड पाताल अरंबे, गुप्त हो प्रगटी आएंदा, ताका अंत न जाने कोई।

सो दरगाह पहजै साच मलाई समाईंदा हुक्मे जुग छत्ती गोदारी हुक्मे सिद्ध साधक विचारी आप नात नथी सब जाकी बख्शे मुक्त कराईंदा काया कोट गड़ै महराजा नेब खवास भला दरवाजा मिथ्या लोभ नाही घर वासा लब पाप पछताईंदा सत संतोख नगर महकारी जत सत संजम सरन मरारी नानक सहज मिलै जग जीवन गुर शब्दी पत पाईंदा मारू महला पहला सुन कला अपरंपर धारी।

ते साजी सृष्ट अपाहे काया गणराजी अग्न पाणी जियो ज्योत तुम्हारी सुन्ने कला रहा इंदा सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सुन्ने वर्ते जुग सबाई इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिय परम चुकाएंदा सुन्नो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सत सर मनुआ गुरमुख नावै फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा सुन्नो चंद सूरज गहनारी तिसकी ज्योत त्रे पौन सारी सुन्ने लख पार नरालम सुन्ने ताड़ी लाएंदा सुन्नो धरत आकाश पाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रे पवन साज में खुली माया आप उपाए खपाएंदा सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी सुन्नो उपजी सुन्न समाणी उत्पुज चलत किया सिर करतै विस्माद शब्द देखाएंदा सुन्नो रात दिन सदोह किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर हतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्म

सच्चे घर बारा नानक निर्मल नाद शब्द धुन सच रामै नाम समाईंदा मारू महला पहला जह देखा तह दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर जुगत समाई रहो निराल मराया जग तिसकी छाया जिस बाप न माया ना तिस भैन ना भ्राऊ कमाया ना तिसे उपत खपत कुल जाती ओह अज रावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अत सीतल सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पार उतारी नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी।

अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो घर अपना।

कुल निरंजन गाया हम अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो पव जल जग तरना गुर बोहिथ गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया

ना पावे, बिन गुरु मुक्त न आवे जावे। मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया। सच बिन पव जल जाए ना तरिया, यो समुंड अथाह महा बिख भरिया।

चलह अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त पये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर्धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाई है नानक गुर परम चुकाया।

नारी देख अदिष्ट रहो निवलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाए अनुपहु पद पावे आप गुआए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते तीरा दुकट कट पौ भंजन पाई बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपे हो सतगुर मतवा के जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल भारत राया एहो पौजल जगत शब्द गुर तरी है अंतर की दुबदा अंतर जरी है पांच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन आई है जाई है नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया। अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरभउ गुर शब्द पछाने। अंतर देख निरंतर बूझे, अनत ना मन डोलाया। निरपौ सो आबे अंतर वसिया, अहनस नाम निरंजन रसिया। नानक हर जस संगत पाई है, हर सहजे सह

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाए, साची दरगाह गत पत पाए, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाहा, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाभु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवहु संक ना कीजै, आसा माहि निरास रहीजै, संसार दुख बनासन सेवहु, फिर बहुड़ रोग ना लाया, साचे पावे तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुरु मूरत एका वरतै, नानक हर गुरु पाया, वाचह पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुनह सुनावह काना, अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया, करह विभूत लगावह पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो हौमै, पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर अलख ना पाया, तीर्थ वर्त नेम करह उदयाना, जत सत संजम कतह ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया, न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ, गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया, नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोलहे महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई।

नाम रतन पाया। मनसा मार मन माए समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साके स्यों बन आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वड भागी साचै नाम सदा निबलागी। अंतर नाम रव्या निह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किन पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हों मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै।

किशु ना सूजै। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा, जिनको तुर लिख पाई।

सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई एको रव रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है लख चौरासी जी उपाय ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए सबना रिजक समाहे आपे कीमत होर ना होई है माया मोह अंध अंधारा हम मैं मेरा पसरिया पासारा अन दिन जलत रह दिन राती गुरबिन शांत ना होई है।

बहु भागै अंतर शब्द सदा सुख दाता गुरमुख बूझै कोई है। आपे मेले मेल मलाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए आन दिन भगत करे दिन राती।

बार कृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कुटंब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजे है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई हे पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाई बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है पढ़ था के शांत ना आई हे एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द है किन मारी अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे एक ग्रह कटम मह सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे मन मुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावै कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, रब ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इस्नान दान करह नहीं बूझै,

सो सब को जासी दूजै भाए बांधा जम फासी सतगुर राखे से जन उबरे साचे साच समाई आपे करता कर कर वेखै जिसनो नदर करे सोई जन लेखै गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजै।

सुख पाया, सहजी साच समाई। तंदै तावत मन भया मनूरा, फिर हुए कंचन पेटै गुरपूरा। आपे बख्श लए सुख पाए, पूरे शब्द मलाई। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार, औगण यारी औगण यार। कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम ना पाई। औगण यारी कंत ना पावे, मन की झूठी झूठ कमावे। फिर का साहु ना जाने मूरख, दिन गुर बूझ ना पाई। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सिंगार करे फिर खसम ना पावे।

मानी बहुते भेख करै नह पाई बिन सतगुर सुख ना पाई है। किसनो कहिए जा आप कराई जित पावै तित राह चलाई आपे मेहरवान सुखदाता जो पा

मेहरवान मधसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई से वड भागी जिनी एको जाता घट घट वस रहा जग जीवन दाता एक थै गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख ब्रह्म पौ जाई हे गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू देहे सोई जन पाए नानक नाम वडाई हे मारू महला तीजा सच सलाही गैर गंभीर है सब जग है तिस ही कह चीर है सब कट भोगवै सदा दिन राती

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम भोजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हों तिन बलिहारी जो साच लागे हर गुण गावह अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना।

एहो मन पी जाही। माया लहर शब्द निवारी, एहो मन निर्मल हो मैं मारी। सहजे गुण गावे रंग राता।

विचारी त्रै गुण बधक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवि जही वेद पढ़ हर नाम ना बूझ माया कारण पढ़ पढ़ लूझ अंतर मैल अज्ञानी अंदा क्यों कर दुत्तर तरी जही वेद बाद सब आख बखान है ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण है पुन पाप सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पीजै ही आपे साचा एको सोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक नाम रते मन साचा सचो सच रवि जै ही मारू महला तीजा सच्चा सच्चा तख्त रचाया निज कर वस्या तिथै मोह न माया सद ही साच वस्या घट

सच्चा तन खटिया कदे टोट न आवे बूझै को विचारी सच्चै लाए से जन लागे अंतर शब्द मस्तक वड भागे।

सच कमावे साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी हे सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी हे बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी हे साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सचो सेव है सच त्याव है सच रते विचारी है गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सूख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है सेजन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे भाणे आप मलाए सतगुर राखे सेजन उबरे होर माया मोह खुआरी है गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी है हम मैं मेरा दूजा पाया किसना चल तुर खसम लिख पाया।

तन साचा भगत परे भंडारी हे आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

जीवन जिन अपनायाप पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदे आपे लाई जिस पावे।

तद ही जिन गुर का शब्द पछाता ही एक मूल लगे उन्नी सुख पाया दानी लागे तिन जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को।

लह तोल ज्यों भावै त्यों राखह रहना गुरमुख एको जाता ही जात दुपाणा ता सच्ची कारै लाई अवगण छोड़ गुण माहि समाई गुण मह एको निर्मल साचा गुर कै शब्द पछाता ही जह देखा तह एको सोई दूजे दुर्मत शब्द खोई एक समय प्रभ एक समाना अपने रंग सद राता ही काया कमल है कुमलाना मनमुख शब्द न बुझे एयाना गुर प्रसादी काया खोजे पाए जग जीवन दाता ही कोट गही के पाप निवारे सदा हर जियो राखे उर तारी।

ना कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सहलाही, जुग जुग एको जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा,

आई रत्न अमोलक अग में अपारा कीमत कमन करे विचारा गुर कै शब्दे तोल तलाई अंतर शब्द पछाताई सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा माया मोह पसरिया पासारा मूर्ख पढ़ है शब्द ना बूझ है।

तीजा सो सच सेवे हो सिरजनहारा शब्दे दुख निवारण हारा अगमय गोचर कीमत नहीं पाई आपे अगमय अथाहि आपे सच्चा सच वरताई एक जन साचा।

सच्ची नाई, गुरमुख देव मन वसाई, जिन मन वसया से जन सो है, तिन सिर चूका काहाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा

सारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाण धावत राखै इकत कर आण नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग मह वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावै त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई।

तेल मलाई हूं मैं ममता शब्द जलाई सदा मुकत रह एक रंगी नाही किसे नाल काहाई बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द है कोई ना पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहाई दुख सुख करते तुर लिख पाया।

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो लिवलाई। हर गुण गावे है सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई। नानक जन नाम

पूरै सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

कूट मदे किसे बुझाई, गुर कै शब्द रत्ती रंग लाई। हर सलाह है सदा सुखदाता, हर बख्शे भगत सलाहाई। सतगुर सेव है से जन साची, जो मर जम है काचन काची। अगम अगोचर वे परवाह, भगत वच्छल आथाहाई। सतगुर पूरा साच दृढ़ाई, सच्चे शब्द सदा गुण गाई। गुणदाता वरतै सब अंतर, सिर सिर लिखदा सहाई। सदा हदूर गुरमुख जापै, शब्दे सेवै सो जन त्रापै। अनदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चै ओ माहाई। अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाई, मन हठ कर्म फिर जोनी पाई। बिख्या कारण लब लोभ कमावै, दुर्मत का दुराई। पूरा सतगुर भगत दृढ़ाई, गुर कै शब्द हर नाम चित लाई। मन तन हर रविया काट अंतर, मन पीनै भगत सलाहाई। मेरा प्रभ साचा असुर संघारण, गुर कै शब्द भगत निस्तारण। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, सिर शाह पातशाही। से भगत सच्चे तेरे मन पाई, दर कीर्तन करह गुर शब्द सुहाई। साची बाणी अन दिन गावह, निरत

उपाया आपे फर्क करे वेख विगसै सब रस देही माहाई वाजे पौन तै आप बजाई शिव शक्ति देही मह पाई गुर प्रसादी उल्टी होवै ज्ञान रतन।

ते सब किछ पाए हऊ मैं मेरा आप गवाई। आपे कृपा करे सुख दाता गुर कै शब्द सुहाहे। गुर का शब्द अमृत है बाणी अन दिन हर का नाम बखाणी। हर हर सच्चा वसै घट अंतर सो घट निर्मलता हाहे। सेवक सेव है शब्द सलाह है सदा रंग राते हर गुण गाव है। आपे बख्शे शब्द मलाई परमल वास मन ताहाई। शब्दे कथ कथे सलाही मेरे प्रभ साचे वे परवाही। आपे गुणदाता शब्द मलाई शब्द का रस ताहाई। मन मुख भूला ठहर ना पाई जो तुर लिखिया सो कर्म कमाई। बिख्या राते बिख्या खोजै मर जन्मै दुख ताहाई। आपे आप सलाई तेरे गुण प्रभ तुझ ही माही।

ये कर्म कमाए, गुर कृपा ते घट अंतर वस्या, शब्दे सच सलाहाई, से जन मिले तुर आप मलाई, साची बाणी शब्द सुहाई, नानक जन गुण गावे नित साची, गुण गावे गुणी समाहाई, मारू महला तीजा, निचले एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्याएन, गुरमत सील समाहाई, अंदर रंग सदा सचियारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वस्या घट अंतर, छोड़िया माया कालाहाई, रैयत राजे दुरमत दोई, बिन सतगुर सेवे एक ना होई, एक त्याएन सदा सुख पाएन, निश्चल राजत नाहाई, आवन जाना रखे ना कोई, जम्मन मरण तिसै ते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावहु, गत मुक्त तिसै ते पाहाई, सच संयम सतगुरु द्वारे, हउमै क्रोध शब्द निवारे, सतगुर सेव सदा सुख पाईऐ, सील संतोख सब ताहाई, हउमै मोह उपजै संसारा, सब जग बिनसै नाम वसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईऐ, नाम सच्चा जग लाहाई, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिलवाजा वाया, सदा कारज सच नाम सुहेला, बिन शब्द है कारज के हाही, खिन मह हसै खिन मह रोवै, दूजी दुर्मत कारज ना होवै, संजोग वजोग करतै लिख पाई, कीर्तना चलै चलाहाई, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाई, हर सिउ सद ही रह समाई, गुर कृपा ते मिलै वडियाई, हउमै रोग न ताहाई, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करै गुर शब्द न कमाई, अंतर रोग महा दुख भारी, बिष्टा माहि समाहाई, वेद पढ़ै पढ़ बाद बखाणै, घट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाणै, गुरमुख होवै सो तत् बलोवै, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़ै बाहर धावै, मनमुख अंधे साध ना पावै, अनरस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मनमुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै नित होए खुआरू, काम क्रोध मन दूजै लाया, सुपने सुख ना ताहाई, कंचन देही शब्द पतारू, अनबिन भोग भोगे।

कटे बैरागी निज करवा सा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच वखाणी सच्च